FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 27 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ हो रही है।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए आज सुनते हैं माया मोह विषय पर विचार।
3: श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, यो न ईर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरः। यानी जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, जो न शोक करता है न आकांक्षा ही रखता है, जो शुभ अशुभ का समान रूप से परित्याग करता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। मोह बड़ा प्रबल है, सारा संसार इसके चक्र में फंसा हुआ है, परंतु मोह त्यागने का अर्थ वैराग्य नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि संसार के कर्तव्यों से विरक्त होने को वैराग्य नहीं कहते, फला फल का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। अपने कर्तव्य कर्मों की निष्ठा ही हमें वैसा निष्कर्म बना सकती है। उन्नति का लक्ष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ना है। संसार का धन बटोर लेना या जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा लेना ही उन्नति का सूचक नहीं है। हम कहीं धन संग्रह के रोग से ग्रसित न हो जाएं। धन का लोभ सच्चे आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। संत कबीर ने इस भक्ति मार्ग को प्रेम का मार्ग बताया, कहा कि ये मोह मुक्ति इतनी आसान नहीं है। जिसमें अपना सब कुछ लुटा देने का सामर्थ्य हो, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद ने मोह माया से उबरने को कहा कि दुनिया में घुसो और कर्म के रहस्य को सीखो, संसार की मशीन के पहियों से मत भागो, दुनिया में भी अपने लिए ही मत जियो, दूसरों से प्रेम करो। बाइबल में लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाए। यदि केवल उन्हीं से तुम प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम करते हैं, यानी इसका यह अर्थ हुआ कि हम केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो फिर इसमें पुण्य की क्या बात है। गुरु नानक ने कहा, जो कोई सत्य से प्रेम करता है वही पवित्र है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना है कि बौद्धिक संकीर्णता, जातिगत और धार्मिक भेदों से हमें कोसों दूर रखता है। हमारा उद्देश्य भलाई को बढ़ाना और बुराई को दूर करना होना चाहिए। सत्य और न्याय के अवलंबन से भलाई जितनी बढ़ती है, बुराई उतनी ही घटती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुख का एकमात्र कारण अज्ञान है। इस अज्ञानता से उबरना होगा। छोटे छोटे स्वार्थ, धन लोलुपता, अपनी अतृप्ति से स्वयं को हम स्वयं ही उबार पाएंगे। महावीर स्वामी कहते हैं, तो अपना दीपक आप बन। अपने ही ज्ञान के आलोक से हमें मुक्ति मिलेगी। सचमुच जीवन की राह बहुत कठिन है, पर ऐसी भी कठिन नहीं कि पार ना जाया जा सके। अपने आप को स्वयं मांझना होगा, तभी हम मोह माया से उबरने के मंत्र जान सकेंगे। वैराग्य से नहीं, वो तो जीवन से पलायन है।
0: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे माया मोह विषय पर विचार। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा। शिव हैं रक्षक, शिव हैं शिक्षक, मित्र शिव हैं, भ्राता भी शिव हैं। शिव विधाता, शिव हैं दाता, शिव पिता हैं, शिव हैं माता।

स्वर्ग से सुंदर भवन है माता का, सबसे प्यारा चरण है माता का। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, सबसे मीठा वचन है माता का। माँ के चरणों में सुख का धाम, माँ से ही मिलता जग में नाम। जो माँ का सम्मान करे उसका जीवन हो जाए महान।

भक्ति भावना से मन पावन हो जाए, जीवन का हर पथ मधुबन हो जाए, प्रेम दया और सत्य का दीप जले, हर हृदय में ईश्वर का वास मिले।

राम तक पहुंचने का मार्ग सुगम करते हैं, इसीलिए राम का गुणगान करते हैं। सागर की गहराई में मोती मिलते हैं, भक्ति की गहराई में राम मिलते हैं।

भक्ति भावना मन में सकारात्मकता लाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। प्रभु के प्रति अटूट विश्वास, मंत्र जाप और समर्पण से मानसिक शांति मिलती है। ये तनाव को दूर कर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ मन में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण का संचार करती है।

आराधना में आज आपने दीपा नारायण, सोनू निगम, हरिओम शरण, अनुपमा देशपांडे, लता मंगेशकर, रूप कुमार राठौर और साथियों की गाई भक्ति रचनाएं सुनी।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है आज की बात का। आज की बात के अंक में आप सभी का स्वागत है। कीजिए स्वीकार पूजा धोनी रावत का प्यार भरा नमस्कार। आज है 29 जून। आइए नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जो आज के दिन को खास बनाती हैं। श्रोता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म आज ही के दिन यानी 29 जून साल 1893 को कलकत्ता में हुआ था। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। वे भारत की आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने थे। औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। उन्होंने कृषि और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों में कई अभिनव प्रयोग किए। उनके द्वारा सुझाए गए बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर अमल करते हुए भारत सरकार को इसी दिशा में अप्रत्याशित सफलता मिली। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल आज के दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जून 1972 में उनका निधन हो गया। श्रोता, पद्मनाभन कृष्णा गोपाल अयंगर यानी पी के अयंगर का जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था। वे भारत के एक अग्रणी परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने 1974 के

स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण की डिजाइन और निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। बाद में वे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष बने। पी के अयंगर के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1971 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 21 दिसंबर 2011 में पी के अयंगर इस दुनिया से विदा हो गए। श्रोताओ, सरदार बलदेव सिंह की आज पुण्यतिथि है। 11 जुलाई साल 1902 को पंजाब में जन्मे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक रहे। आज ही के दिन यानी 29 जून 1961 को नई दिल्ली में सरदार बलदेव सिंह का निधन हो गया। और श्रोताओ, दुनिया की सबसे पुरानी संगीत की रिकॉर्डिंग आज ही के दिन यानी 29 जून साल 1888 को इजिप्ट में हुई थी। लंदन के क्रिस्टल पैलेस में जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल के ऑरेटोरियम इज़राइल इन इजिप्ट की लाइव प्रस्तुति को थॉमस एडिशन के फोनोग्राफ की मदद से पैराफिन सिलेंडर पर ये रिकॉर्डिंग की गई। श्रोताओ, हर साल आज ही के दिन यानी कि 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। ये पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। इस दिवस की शुरुआत स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के प्रकाशक के उपलक्ष्य में हुई थी, जो पहली बार 29 जून साल 2014 को जारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक तौर पर हर साल 29 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाना और जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और गरीबी जैसे इन देशों के सामने आने वाली अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। तो श्रोताओ, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम विविधा का।

आज के विविधा कार्यक्रम को लेकर आप सभी के साथ मैं हूं पूजा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 29 जून। हर साल आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून साल 1893 को कलकत्ता में हुआ था। ये दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा सांख्यिकी के विकास के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए। सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत रखकर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस आशय की अधिसूचना दिनांक 5 जून साल 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। ये दिवस राष्ट्रीय विकास में सरकारी सांख्यिकी के महत्व को उजागर करने के लिए संगोष्ठियों, चर्चाओं और प्रतियोगिताओं को आयोजित करके मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस युवाओं के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युवाओं को डेटा संचालित निर्णय लेने, विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को समझने के लिए प्रेरित करता है। ये दिवस युवाओं को डेटा विज्ञान में करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। आज की डिजिटल दुनिया में सही और गलत जानकारी की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। सांख्यिकी युवाओं को अफवाहों से दूर रखकर वैज्ञानिक और तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने की क्षमता देती है। डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। सांख्यिकी इन आधुनिक तकनीकों की नींव है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस युवाओं को जागरूक करता है कि कैसे सरकारी नीतियां, बजट और विकास योजनाएं सटीक डेटा और सर्वेक्षणों पर आधारित होती हैं। युवाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा, वित्त और करियर के चुनाव में डेटा का सही विश्लेषण करने में सांख्यिकी मदद करती है। सांख्यिकी की पूर्ण जानकारी होने पर युवाओं को ये समझने में सहायता मिलती है कि कैसे सरकारी योजनाएं जैसे बेरोजगारी दर, गरीबी रेखा या आर्थिक विकास के आंकड़ों को देखकर बनाई जाती है। ये उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। सांख्यिकी युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। वे किसी भी जानकारी को आँख मूंदकर मानने के बजाय उसे तर्क विश्लेषण और उसे प्रमाण के तराजू पर तोलना सीखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का विविधा कार्यक्रम।

FM 100.8 मेगाहर्ट्स और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ

0: भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिनां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी

0: एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज़ जल डमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग। घर संसार कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर आज चर्चा होगी अल्पसंख्यकों हेतु योजना, साथ ही इसी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी पत्रोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों की चिट्ठी। खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर राजकुमार की वार्ता प्रसारित की जाएगी दिन में 2:30 पर, विषय होगा संतुलित आहार में सब्जियों का महत्व। शाम 5:15 पर युवानी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा किताबें पढ़ने की अच्छी आदत। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स विषय पर। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बातें का विषय होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, साथ ही इसी कार्यक्रम में होगी चर्चा, विषय होगा मिश्रित खेती के लाभ। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनाएंगे सुबह 8:30 पर और सुबह 11:30 पर। मिले जुले गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरंग सुबह 10:05 पर, सबरस होगा रात 8:00। सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर और रात्रि 10:00। संध्या 6:41 पर आनंद लीजिएगा भक्ति रचनाओं का। शैलजा मसीह के गाए कुमाऊनी लोकगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैल स्वर में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दिन में 2:00।

फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे सुबह 9:05 पर गीत निर्झर कार्यक्रम में। सुरबहार कार्यक्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत सुबह 10:35 पर दिन में 11 बजे आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12 बजे होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। अपराह्न 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम। अपराह्न 3 बजे आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। शाम 7:40 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष हम आपको सुनवाते हैं रात्रि 9:15 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान पाठ से भाग 139।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूँगी। मंथरा अपनी स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से भाग 139। गायक कलाकार थे ए हरिहरन, मिताली सिंह और उत्तरा केलकर। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन शुरू किया गया। योजना से स्वरोजगार और आय बढ़ने की उम्मीद। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 आवासों का जल्द लोकार्पण कर लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सहकारिता सप्ताह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों के प्रभावी और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि, देवभूमि की प्रगति विषय पर आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पैक्स, जिला सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान सहकारी चौपाल, जन जागरूकता शिविर, कृषि, उद्यान, दुग्ध एवं मत्स्य से संबंधित कार्यशालाएं तथा महिला और युवा सहकारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण, ई पैक्स, सामाजिक सहभागिता और हरित एवं सतत कृषि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों और विकास खंडों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए

0: ये समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवा शक्ति ही विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिभा देश के विकास की सबसे बड़ी शक्ति है तथा राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रुड़की में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी दर्ज की गई है।
2: हमारा विजन बिल्कुल साफ है कि हम एक ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं जहां हमारे युवाओं को अवसर मिले, उनको

0: कार्यक्रम में सुधामी ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी दर्ज की गई है।
1: हमारा विजन बिल्कुल साफ है कि हम एक ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं जहां हमारे युवाओं को अवसर मिले, उनको पलायन न करना पड़े, बल्कि अपने घरों में रह के ही वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सके, यानी कि अपने घर पर ही उनको रोजगार मिले, काम का अवसर मिले। इसके लिए हमने राज्य में स्टार्टअप कल्चर, उसको हम रफ्तार दे रहे हैं, नई रफ्तार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो आप जैसे युवाओं के हुनर को नई दिशा देने का प्रयास इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा है, और ये सभी योजनाएं नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं, और हमारी इन्हीं नीतियों का और प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद भी किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी निगरानी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित लोहिया डेह वाटर बाईपास का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए लोहिया डे वाटर बाईपास को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा कॉरिडोर और शारदा रिवर फ्रंट परियोजना के माध्यम से भी क्षेत्र के विकास को गति दी जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय व्यवसायों और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोहिया डे वाटर बाईपास के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों में गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसी क्रम में चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन की शुरुआत की गई है। योजना के तहत बाराकोट और पाटी विकासखंड के 100 किसानों को रेशम कीट और शहतूत के पौधे उपलब्ध कराए गए। लगभग 10 माह के में किसानों ने 52 किलोग्राम रेशम कोकुन का उत्पादन किया है, जिससे भविष्य में आय बढ़ने की उम्मीद है। रेशम विभाग के प्रभारी अधिकारी विनोद महारा ने बताया कि सिल्क समग्र 2 योजना के तहत पाटी विकासखंड के 70 और बाराकोट के 30 किसानों का चयन किया गया है। किसानों को रेशम कीट पालन के लिए किट गृह निर्माण के लिए 1,66,500 रुपये तक की अनुदान सहायता के साथ आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।
3: हम लोग कीट पालन गृह उपलब्ध करवाते हैं, जिसके लिए अनुदान स्वरूप रेशम विभाग द्वारा 1,66,500 की धनराशि किसान को प्रदान की जाती है, और उसके साथ साथ ही कीट पालन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। बाराकोट ब्लॉक में 30 और पाटी ब्लॉक में 70 किसानों सहित 100 किसान वर्तमान में कीट पालन रेशम कीट पालन का कार्य कर रहे हैं, और जिससे वर्ष में 3 बार अक्टूबर में और अब मई जून में वर्ष में 3 बार शहतूत उत्पादन कर रेशम उत्पादन करके अपनी आजीविका में बढ़ावा कर सकते हैं।
0: योजना से जुड़े किसान भी इसका लाभ मिलने की बात कह रहे हैं।
4: हम भीम कुमार है, मैं ग्राम त्यारसन से बिलोंग करता हूँ। हमने पिछले साल शिल्प समग्र 2 के तहत शहतूत वृक्षारोपण किया था। उसके 9 माह उपरांत हमने प्रायोगिक तौर पे रेशम का उत्पादन किया, जो 12 किलो है कोकून उत्पादन। हमने जो कोकून उत्पादन किया था वो विभाग द्वारा ही 600 रुपये के हिसाब से हमसे प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया। हमने जो कोकून का उत्पादन किया है इस बार, उसको देख के काफी आसपास के किसान उत्साहित हैं।
0: पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम कीट पालन स्वरोजगार का एक नया विकल्प बनकर उभर रहा है। यदि यह पहल इसी तरह आगे बढ़ती रही तो इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पलायन रोकने में भी मदद मिल सकती है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 156 करोड़ रुपए की लागत से बने 1

0: 1872 आवासों का जल्द लोकार्पण कर उन्हें लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने आवासों की प्रगति और लाभार्थियों द्वारा जमा की गई धनराशि की जानकारी भी ली। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रत्येक आवास के लिए 3 लाख रुपए सरकार और 3 लाख रुपए लाभार्थी की ओर से दिए जाने हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपने काशीपुर भ्रमण के दौरान सिडकुल की विभिन्न विकास परियोजनाओं और सड़क अवसंरचना कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सिडकुल क्षेत्रीय कार्यालय, हेमपुर नेमा फार्म की भूमि, काशीपुर रामनगर 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा काशीपुर बाईपास रिंग रोड परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपने काशीपुर भ्रमण के दौरान सिडकुल के विभिन्न विकास परियोजनाओं और सड़क अवसंरचना कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सिडकुल क्षेत्र कार्यालय, हेमपुर नेपा फार्म की भूमि, काशीपुर रामनगर 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा काशीपुर बाईपास रिंग रोड परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 133 एकड़ में विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 56 औद्योगिक भूखंड है, जिनमें से 22 आवंटित किए जा चुके हैं। 177 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए शेष 45 करोड़ रुपए की मांग शासन को भेजी गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से सिमरन बिंजोला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन शुरू किया गया। योजना से स्वरोजगार और आय बढ़ने की उम्मीद। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 आवासों का जल्द लोकार्पण कर लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। आइए इस कार्यक्रम में आज पहले सुनते हैं शैलजा मसीह का गाया ये लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।

शैलजा मसीह के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं पान सिंह बिष्ट और महिपाल सिंह मेहता का गाया ये लोकगीत।

महिपाल सिंह मेहता और पान सिंह बिष्ट के गाए इस लोकगीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं हयात सिंह बोरा का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के बाद आइए लोकमंजरी कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं गोकुल सिंह बिष्ट और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: गोकुल सिंह बिष्ट और साथियों के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकपंजरी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं, अब समाचार लेके जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।

0: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में

0: तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
1: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर

0: अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मॉनसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Navin Chandra Ramgoolam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon.

8.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाय राग ललित। आपके साथ संगत की है तबले पर अनिंदो चटर्जी ने और बांसुरी पर रूपक कुलकर्णी ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित। आपके साथ संगत की थी तबले पर अनिंदो चटर्जी ने और बांसुरी पर रूपक कुलकर्णी ने। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। दोनों नेताओं ने भारत के विजन महासागर, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता के तहत भारत मॉरिशस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे और बातचीत आगे बढ़ सके। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। बचाव दल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम और माही में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। इस वक्त आप इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत निर्झर का। आज के इस सफर में आपकी हम सफर मैं हूँ पूजा, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। उनसे पहली मुलाकात का यारो क्या बताऊं फसाना, उनसे पहली मुलाकात का यारो क्या बताऊं फसाना, दिल से जुड़ गए दिल और बन गया अफसाना। नजरें मिली तो वक्त भी जैसे ठहर सा गया, नजरें मिली तो वक्त भी जैसे ठहर सा गया, एक ही पल में उम्र भर का मिल गया ठिकाना।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में अप्रैल फूल फिल्म से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। सुनने का अनुरोध किया था आप सभी ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, जाखौत राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शंभू दयाल खटक, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और असमा नाज अंसारी। इसी गीत की फरमाइश की थी ऊपर कोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन परासर, बेबी आराध्या और मीरा सिन्हा। सांगली जिले के जट शहर से अल्ताफ हुजरे, शैफुल्लाह, शबाहत कीरत हुजरे और रेहान शेख। मामूल बाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंत राज भोजने और पी एस महाणकर। इसी गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीबुद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। गुजरात विरंगाम से अजीत भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश कुमार भावसार, जैमिन भावसार, राजेश राकेश कुमार भावसार और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में शर्मीली फिल्म से। इस गीत को लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने। फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोताओं की। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर, टुक टुक गुहाणकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गुहाणकर, श्वेता सुमित गुहाणकर, कुमारी ध्वनि गुहाणकर परी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य।

शर्मिली फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम का अगला गीत है विपिन सचदेव की आवाज़ में सनम बेवफा फिल्म से। गीत है सावन कुमार का, संगीत महेश किशोर का। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध किया है छत्तीसगढ़ बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल बाबू, प्रियांश भव्या देवांगन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इसी गीत की फरमाइश की है। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में तपस्या फिल्म से। MG हसमत के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। सुनने की ख्वाहिश की है आप सभी ने। गोलना करड़िया अल्मोड़ा से हैं गोपाल, रेखा, पूर्णिमा और निवेदिता। मकेड़ी अल्मोड़ा से शुभांगी, सुनील, जीवन, गंगा, रूपाली, प्रार्थना, तन्मय, वामिका, वान्या, दिया और तेजस। इसी गीत की फरमाइश की है फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से लल्लन मिश्रा, उदय कांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। यहीं से हैं भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर। भूण चौराहा बुलंदशहर से हैं पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेन सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा सोलंकी, शौर्या सोलंकी और मून सोलंकी। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरीन, फारिया और ताहिरा। इसी गीत को सुनना

चाहते हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना, बेंगलोर से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दीपेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके परिवार के सभी सदस्य, एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।

तपस्या फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ चिराग फिल्म से। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है। फरमाइश की है खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और वैदिक वेद ने। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़, धर्मवीर और कमल। साथी हैं जतिन।

इंदरपाल और संजय, इसी गीत की फरमाइश की है जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। कस्बा परार जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्य। वर्षिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ इसी गीत को सुनना चाहते हैं। लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्य।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधान खुराना, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। इसी गीत की फरमाइश की है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल और विशाल सपकाल। माल टेकरी अमरावती से प्रशांत ठेकरे, वर्षा और श्रद्धा। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धांत कुडाने, अर्चना प्रणय और हीरामन शेंडे।

किशोर कुमार के गाए मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत के बाद आइए आज के गीत निर्झर कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने और सुनना चाहते हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, पोपल घाट से माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू सिक्का और भाविक, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर और बेबी आयशा खत्री, गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु उस्मान और कलीम। इसी गीत की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राश्री राजेश और शीतल राजेश, महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील बाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और इनके परिवार के सभी सदस्य, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाह है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राजेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छे लाल, बुल्की वाले और इनके परिवार के सभी सदस्य, और पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का समापन गीत हमराज फिल्म से।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। ये समय है सबरंग कार्यक्रम का।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

उस्ताद अहमद और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल के बाद आइए सबरंग कार्यक्रम की को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं गौहर कानपुरी का लिखा गीत सलमा आगा की आवाज़ में।

सलमा आगा के गाए इस गीत के बाद आइए सब रंग कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये गजल।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप

न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अमृता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को

0: संगीता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रोटी न्याय पंचायत के 6 शक्ति केंद्रों और 22 बूथों के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में श्री जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ संचालित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराना तथा लोगों को आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जागरूक करना कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा 3,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर का निरीक्षण कर उपलब्ध खेल सुविधाओं का जायजा लिया और खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में खेल अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिल सके। श्री धामी ने कहा कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हरिद्वार रुड़की और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहां खिलाड़ियों के लिए जिम, बैडमिंटन कोर्ट और अन्य आवश्यक खेल संसाधनों की व्यवस्था भी की गई है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर नंदादेव राष्ट्रीय पार्क में 21 दिनों तक चले जैव विविधता अनुश्रवण अभियान के दौरान हीम तेंदुए सहित कई दुर्लभ वन जीवों की मौजूदगी के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अभियान में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों की मदद से उच्च हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन किया। 7 से 28 जून तक चले चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान के दौरान वैज्ञानिकों, वन विभाग, ITBP और SDRF की संयुक्त टीम ने लाता गांव से सर सोपाताल बेस कैंप तक उच्च हिमालय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान कैमरा ट्रैप, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों की सहायता से बुग्यालों, हिमनंदों, वनस्पतियों और वन्यजीवों का अध्ययन किया गया। अभियान में हिमालय थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालय भालू, साइबेरियन विजन और पाइका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए, जबकि हीम तेंदुए, हिमालय रेड फॉक्स, सीरो और हिमालय मॉर्टिन की मौजूदगी के अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले। इसके अलावा हिमालय मोनाल, स्नो कॉक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेकर गायर सहित कई दुर्लभ पक्षियों की भी उपस्थिति दर्ज की गई। अध्ययन के दौरान औषधि पौधों, लाइकेन, कीट पतंगों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी आकलन किया गया। अभियान के समापन पर वैज्ञानिक दल ने लाता गांव में स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और इको टूरिज्म में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब बेहद करीब है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राज्य में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज चमक, आकाशीय बिजली, बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल से 2 जुलाई के बीच कई जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के अधिकांश जिलों में तथा 2 और 3 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। अगले 1 से 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़

एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। आज के सुरबहार कार्यक्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत बात करते हैं, साल 1974 की हिंदी फिल्म आपकी कसम की। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ मैं हूं पूजा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रुता फिल्म आपकी कसम जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित की गई है, जो उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज़ और संजीव कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है।

श्रोताओं, सुरबहार कार्यक्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं आपकी कसम फिल्म के। ये फिल्म कमल और सुनीता के प्रेम और विवाह की कहानी है। दोनों का जीवन सुखद चलता है, लेकिन कमल अपने मित्र मोहन और अपनी पत्नी के संबंधों पर बिना कारण शक करने लगता है। उसका यही संदेह उसके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिल्म ये संदेश देती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है और बेबुनियाद शक रिश्तों को तोड़ सकता है।

श्रुता फिल्म आपकी कसम का संगीत निर्देशन किया था राहुल देव बर्मन ने और सभी गीत लिखे थे प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी ने। सभी गीत सुपरहिट रहे। इन गीतों को आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। फिल्म आपकी कसम एक बेहद लोकप्रिय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को देखकर दर्शकों ने यही सीखा है कि शक एक ऐसा जहर है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। प्रेम ही एक सफल वैवाहिक जीवन की असली नींव है।

श्रोताओं, सुरबहार कार्यक्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे आपकी कसम फिल्म की। अब इस कार्यक्रम से पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, दो बीघा जमीन फिल्म से मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत है लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिव हरि ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में दुश्मन फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की।

दुश्मन फिल्म के इस गीत के बाद सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अगला गीत है प्यार भरा दिल फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। गीत है योगेश का और इस गीत को संगीत दिया है निखिल विनय ने।

प्यार भरा दिल फिल्म के इस गीत के बाद आइए सैनिक भाइयों कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में जान की कसम फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के गाए जान की कसम फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, आज के कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के

अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए उस्ताद जाकिर हुसैन की तबले पर बजाई रूपक ताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दिया है सुल्तान खान ने और तानपुरा पर मदन बोंगल ने।

0: तबले पर रूपक ताल अभी आपने सुना, कलाकार थे उस्ताद जाकिर हुसैन। सारंगी पर साथिया था उस्ताद सुल्तान खाने। शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।
1: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई,
2: नई नई लाइटें।
3: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
2: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
3: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
2: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
3: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
2: खरीदें बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं का अंजुपांग थे का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, एक मशहूर जानी मानी अभिनेत्री, फिल्मी दुनिया की मॉडल, लेखिका और वीडियो जॉकी, साथ ही ट्रैवल ब्लॉगर यानी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी एक कलाकार हैं शहनाज ट्रेजरीवाला। आज उनका जन्मदिन है तो उन्हें ढेर सारी हम शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन की, और आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों का सफ़र तय करते हैं मेरी पसंद में। सुनते हैं चंद खूबसूरत नगमे उन्हीं के नाम।

तो श्रोताओं, सपनों की नगरी मुंबई में जन्मी शहनाज ट्रेजरीवाला की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। शहनाज की जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना नई उड़ान, नई चुनौती और एक अनोखी कहानी लिए हुए है। चुलबुली भूमिका के साथ डेब्यू हो या फिर घूमने फिरने की बात हो, वीडियो जॉकी की बात हो, लिखने पढ़ने की बात हो, उनका सफर प्रेरणादायी रहा है। 29 जून 1981 को एक पारसी परिवार में मुंबई में जन्म हुआ शहनाज का, और उनका सफ़र बेहद शानदार रहा। शहनाज ट्रेजरीवाला की कहानी शुरू होती है मुंबई में, जहां एक साधारण पारसी परिवार की ये लड़की, जिसके बड़े बड़े सपने थे और कॉलेज की किताबों से निकलकर ग्लैमरस दुनिया में वो पहुंच गई। कॉलेज के दिनों में एक फोटोग्राफर की नज़र शहनाज की मॉडलिंग की दुनिया के लिए काफ़ी था और वो आ गई मॉडलिंग की दुनिया में। और यही वो पल था जब किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी और शहनाज ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही कई बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में उनकी मुस्कान चमकने लगी। MTV में मोस्ट वांटेड प्रोग्राम में बतौर वीडियो जॉकी वो शामिल हुई और बड़े ही बेबाकी और बिंदास अंदाज से उन्होंने इस प्रोग्राम को पेश किया।

जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। और फिल्मी दुनिया की शुरुआत की बात करें तो साल 2001 की तेलुगु फिल्म एडुरुलेनी मनीषी से उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। और यहाँ हम अगर बॉलीवुड की बात करें तो साल 2003 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म इश्क विश्क से। और इस फिल्म में शाहिद कपूर, अमृता राव के साथ वो नज़र आईं। और इस फिल्म में उनका किरदार आलिया दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहा। और ये ना केवल शाहिद कपूर और अमृता राव के लिए बड़ी फिल्म रही, बल्कि ये फिल्म शहनाज के लिए भी सफलता के दरवाजे खोलने में सफल रही।

शहनाज ट्रेजी वाला एक अभिनेत्री तो है ही, साथ ही मॉडल, टीवी होस्ट, लेखिका, ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और फिल्मों में तो उन्होंने काम किया ही, साथ ही छोटे पर्दे पर यानी टेलीविज़न की दुनिया में भी उन्होंने नाम कमाया, और वीजे के रूप में वो जानी जाने लगी थी, और एमटीवी पर ये शो आता था। इसके बाद उन्होंने अभिनय की शुरुआत की, कई चर्चित फिल्मों में वो नज़र आईं, जिनमें इश्क विश्क से उन्होंने डेब्यू किया, हम तुम, आगे से राय, डाली बैली जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा।

घूमने फिरने की बेहद शौकीन है शहनाज, और उन्होंने ट्रैवल शो कल्चर शॉक होस्ट किया और अमेरिकी टीवी सीरीज वन लाइफ टू लिव में रमा पटेल की भूमिका निभाई, और एक और अमेरिकी कार्यक्रम द नाइटली शो विद लैरी वलमोर में भी उनका योगदान रहा। और अभिनय के साथ साथ शहनाज ने यात्रा को भी अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया और कई देशों की उन्होंने यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत लिखे। आज वो सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं, और साल 2025 में उन्हें बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिला है।

संदेश और शुभकामनाएं हमें मिलती हैं बहनों की चिट्ठी के माध्यम से, और आपके द्वारा भेजी गई ये चिट्ठियाँ हमें एहसास कराती हैं हमारे महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार और अर्पण के सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक परिवार है, जहाँ हमारी हर सखी का स्नेह, अपनापन और आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है। आपके संदेशों में कहीं प्रेरणा होती है, कहीं प्यार, कहीं सुझाव, तो कहीं जीवन के नई दिशा देने वाली बातें। तो बहनों, इन्हीं प्यारी भावनाओं को संजोते हुए आइए शामिल करते हैं आपके प्यारे खूबसूरत संदेशों को पत्रोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों की चिट्ठी सेगमेंट में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंजू पांगती और दीपिका पंत।

0: घर संसार कार्यक्रम में बहनों की चिट्ठी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और ये महीना है जून का और बहनें समझ ही गई होंगी आज है घर संसार का इस माह जून का समापन का अंक और आज ही के दिन हम लेकर आते हैं हर माह बहनों की चिट्ठी। तो बहनों की चिट्ठी के साथ मैं अंजू पांगती और
1: मैं दीपिका पंत
0: हाजिर हैं। आज बहुत सारे हमें मैसेजेस भी आए हैं, चिट्ठियां भी हैं और आप देख रही हैं कुछ चिट्ठियां तो बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई हैं और बहुत अच्छी उनकी राइटिंग है। तो कुछ ऐसी भी लेखन है किसी में कि पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, तो कोई बात नहीं, बहरहाल हम शुरुआत करते हैं। तो पहले चलते हैं दूर दिल्ली की तरफ और दीपिका जी, ये पहला मैसेज दूर दिल्ली से आया हुआ है और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने हमें भेजा है। आप हैं दीपक कपूर, श्वेता, बीना कपूर और दिल्ली से ही मल्होत्रा परिवार भी हमसे जुड़े हैं। आप लिखते हैं कि प्रीति कपूर के साथ संगीता तिलारा मैडम की जो भेंट वार्ता थी, जिसमें बच्चों को कैसे गर्मी की छुट्टियों में व्यस्त रखें और मोबाइल से दूर रखें, इस विषय पर जो भेंट वार्ता प्रसारित की गई थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। साथ ही इसमें माँ की भूमिका को लेकर जो भी बातें बताई गई थी वो बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तो थी ही और साथ ही आजकल के समय के लिए बेहद उपयोगी भी थी। और जैसा कि दीपिका जी, आजकल हर माता पिता की यही बात रहती है कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो उससे संबंधित ही ये भेंट वार्ता प्रसारित हुई थी, तो इन्हें बहुत अच्छी लगी है और ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: दीपक जी, श्वेता, बीना जी और मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने हमें ये मैसेज लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा कार्यक्रम इतने ध्यान से सुना और साथ ही हमें सुझाव भी अपने भेजे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजी हैं। और जैसा कि अंजू जी ने बताया कि आजकल सभी माता पिताओं की और अभिभावकों की ये इच्छा रहती है कि बच्चे मोबाइल थोड़ा कम देखें, स्क्रीन टाइम कम हो, तो हम भी यही चाहते हैं, इसलिए हमने कोशिश की कि आप तक हम कुछ ऐसे सुझाव, ऐसे उपाय आप तक पहुँचाएँ जिन्हें आप यूज़ कर सकें, उपयोग में ला के बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रख सकें। और ये आपके काम आए ये सुनकर ही हमें बहुत अच्छा लगा और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दीपिका जी, ये अगला हमारे पास पत्र आया है हल्द्वानी से, इन्होंने भेजा है, नाम है गीता जोशी। आपको 15 जून जब आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था वो इन्हें पसंद आया है। इसमें कई लोगों के जो संस्मरण थे अपने, उन्होंने रेडियो के जरिए अपनी बात साझा की थी, वो इन्हें अच्छा लगा। तो आकाशवाणी के कार्यक्रम समय का पूरा उपयोग कराते हुए देश दुनिया भर की जानकारी देते हैं, बिना आंखों और दिमाग पर जोर डाले बिना पूरा मनोरंजन करते हैं। और आज के समय में आकाशवाणी जैसे संचार साधनों की बहुत आवश्यकता है, आगे भी लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन्होंने दी है और इन्होंने आकाशवाणी स्थापना दिवस और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर 8 जून को प्रसारित कार्यक्रम और 15 जून को प्रसारित कार्यक्रम ये आपने सुने हैं और आपने इन कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। इसके जरिए जो लोग हमसे जुड़े जिन्होंने अपनी बातें साझा की, रेडियो को सुना करते थे आज भी सुन रहे हैं, तो सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं, जो भी वो कहना चाहें तो वो सभी उन्होंने बात कही है। और आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले चाहे सुविचार विचार बिंदु की बात हो या रामचरितमानस की बात हो, समाचारों की बात हो, तो ये सभी सुनने का जो एक खूबसूरत अवसर मिलता है वो आकाशवाणी के जरिए ही मिलता है। और शुभकामना भी इन्होंने भेजी है और आकाशवाणी जैसे कि रेडियो एक सुगम, सरल और सच्चा और मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान से भरपूर हमारा कार्यक्रम होता है, तो ये

0: कार्यक्रम से जब श्रोता जुड़ते हैं तो वो ऐसे ही उद्गार हमसे साझा करते हैं, तो यही इन्होंने लिखा है, तो बताया आप।
1: सबसे पहले तो गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा कि अंजू जी ने बताया और आप सभी भी पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि आकाशवाणी ने अपने 9 दशक पूरे कर लिए हैं और आकाशवाणी अल्मोड़ा ने भी इसी माह 15 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंटरनेट के इस युग में भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निरंतर ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, आप तक ज्ञान की बातें भी लेकर आएं और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करते रहें। और आपसे अनुरोध है और आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम आकाशवाणी का हिस्सा हैं, वैसे ही आप श्रोता भी हमारी आकाशवाणी का ही हिस्सा हैं। आप हमें सुनते हैं, सराहते हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने के लिए हम उत्साहित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सराहने के लिए और हमें पत्र लिखने के लिए।
0: दीपिका जी, ये जो अगला मैसेज हमें मिला है व्हाट्सएप के जरिए, आप हैं मकेड़ी अल्मोड़ा से हमारी नियमित श्रोता आरती उप्रेती, तो ये बहुत ही आजकल की जो ज्वलंत समस्या है उस पर ये आधारित हमारे कार्यक्रम की बात इन्होंने की है, साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड से सतर्कता, इस विषय पर श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी से मंजू बोरा की बातचीत इन्हें बहुत पसंद आई
1: जी।
0: ये जानकारी बहुत ही रोचक थी और अच्छी बात यह है कि विशेषज्ञ द्वारा बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाया गया था, और साथ ही योजनाओं का जिक्र भी आपके कार्यक्रम में होता रहता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना पर जो श्री जे एस बोरा जी ने जो जानकारी दी थी वो भी इन्हें बहुत पसंद आई, तो ये पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रही हैं और साथ ही ये भी चाह रही हैं कि आगे भी जो आप अपने घर संसार कार्यक्रम में या अर्पण कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां देंगे वो और भी अच्छी होंगी। और बहरहाल इस जानकारी का इन्होंने जिक्र खास तौर पर ये भी किया है कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना की बात हो या फिर साइबर फ्रॉड से सतर्कता, जो ये दोनों ही विषय थे, इनकी खास बात ये रही कि ये कुमाऊनी में थे। ये उम्मीद करती हैं कि इस कार्यक्रम को जिन बहनों ने भी सुना होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बहनों की बात करें तो उनका इन्होंने जिक्र किया है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, और जब हम अपनी बोली भाषा में जुड़ते हैं लोगों से तो ज्यादा हमें खुशी मिलती है, यही ये लिखना चाह रही हैं, यही मैसेज अपना देना चाह रही हैं।
1: सबसे पहले तो आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी नियमित श्रोता हैं और आप हमें लगभग मैसेजेस और पत्र लिखती ही रहती हैं। जैसा कि अंजू जी ने बोला कि अपनी भाषा में कोई जानकारी हम साझा करते हैं तो वो वास्तव में बहुत अच्छी लगती है और एक अपनापन महसूस होता है अपनी बोली अपनी भाषा में। हम जैसे हमेशा ही कहते हैं कि अपनी बोली को बढ़ाना हमारा एक उद्देश्य है कि हम अपनी बोली में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों का प्रसारण करें और ऐसे मुद्दों का ही प्रसारण करें जो बहुत ही ज्वलंत हैं। जैसा कि आपने बताया साइबर फ्रॉड से आजकल लगभग हर तबके की महिला या पुरुष, हर नागरिक कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो हमारी ये उम्मीद है कि इस बारे में जो हमारी जानकारी आपसे हमने साझा की उसका आप उपयोग करेंगे, सतर्क रहेंगे। साथ ही हमारा यह काम भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि सरकार की लाभकारी योजनाओं को हम आप तक पहुंचाएं, और उसी क्रम में हमने बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया। उन्हीं में से एक रही हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें भी जो हमारे विशेषज्ञ थे, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे विशेषज्ञ भी कुमाऊनी भाषा में अपनी बातों को प्रेषित करना चाहते हैं, जानकारियों को प्रेषित करना चाहते हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो कुमाऊनी में अपनी जानकारी हमसे साझा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं इनसे आप लाभान्वित होंगे और लाभ लेने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी।
0: दीपिका जी, एक और हमारे पास मैसेज आया है, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने साझा की है। मेघा दोसाद हैं आप, हल्दूचौड़ हल्द्वानी से आपने ये मैसेज भेजा है। लिखती हैं कि आकाशवाणी अल्मोड़ा से प्रसारित कार्यक्रम घर संसार बहुत अच्छा लगता है, मैं इस कार्यक्रम की नियमित श्रोता हूँ। घर संसार कार्यक्रम में 3 जून को साइकिलिंग सेहत भी पर्यावरण संरक्षण भी, इस विषय पर उत्तराखंड साइकिलिस्ट भरत शाह से की गई गीता कनवाल की भेंटवार्ता बहुत अच्छी और रोचक लगी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सच में साइकिलिंग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा व्यायाम हो सकता है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। हमें उम्मीद है कि आप घर संसार कार्यक्रम में आगे भी ऐसी ही रोचकतापूर्ण जानकारी लाती रहेंगी। और दीपिका जी, सच में ये पर्यावरण संरक्षण की बात करें या फिर सेहत की बात करें, जब इतने इसमें हमें फायदे हैं तो क्यों ना हम साइकिल चलाएं, तो सभी को ये प्रेरणा देती हुई जानकारी थी।
1: जी धन्यवाद मेघा जी, आपने हमें पत्र भेजा। और जैसा कि आप सभी जानती हैं कि हम अपने कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी बात

0: बातचीत करते हैं। और इस माह 5 जून को हम सभी ने पर्यावरण दिवस मनाया, तो उसी क्रम में हमने ये भेंटवार्ता प्रस्तुत की थी कि साइकिलिंग कैसे हमारे सेहत को भी फायदा देती है और कैसे हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल है। इस विषय पर हमने भेंटवार्ता प्रसारित की थी और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको भी ये पसंद आई। और हम उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नागरिक होने के नाते जो जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं या आपको निभानी चाहिए, हमारे कार्यक्रम सुनकर आपको उसे करने की प्रेरणा मिलेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ऐसे ही पत्र लिखते रहें, अपने सुझाव हमसे साझा करते रहें।
1: दीपिका जी, 2 मैसेजेस हमें मिले हैं और इन दोनों में जिक्र लगभग एक सा है, तो साथ ही मैंने इसको शामिल किया है। आज दिल्ली से हमारे पास काफी मैसेजेस आए।
0: जी, अब दिल्ली दूर नहीं।
1: हाँ, दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली पास ही लगता है, क्योंकि आप कार्यक्रम हमारे ऐप के माध्यम से सुनते हैं। तो ये लता जोशी जी हैं दिल्ली से और पुष्पा बोरा जी हैं हल्द्वानी से। आपने लिखा है, 15 जून को पिरूल वुमन ऑफ उत्तराखंड मंजू आर शाह से मुलाकात करवाई आपने, जो बहुत ही रोचक जानकारी थी। इनके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हमें मिलती ही रहती है। उनकी कहानी रेडियो के माध्यम से उनकी ही जुबानी सुनना बेहद प्रेरणादायी था। और पहाड़ की ऐसी सशक्त महिलाओं से आप हमें यूं ही मिलवाते रहिएगा, यूं तो आप अक्सर मिलवाती ही हैं, और ऐसी महिलाओं से जब हम रूबरू होते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं, तो प्रेरणा से भर जाते हैं। इन्हें सुनकर प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ ही उत्साह और ऊर्जा से हम ओतप्रोत हो जाते हैं, भर जाते हैं। और आगे भी ऐसी ही महिलाएं जो हमारे बीच से ही आगे बढ़ी हैं, उनसे आप मिलवाते रहिएगा, ऐसी इन्होंने अपेक्षा की है।
0: जी, धन्यवाद लता जी दिल्ली से और पुष्पा जी हल्द्वानी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पत्र लिखा, हमारे कार्यक्रम की आपने सराहना की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अंजू जी ने बताया कि पहाड़ की सशक्त महिलाओं पर केंद्रित हमारा एक कार्यक्रम हर माह प्रसारित किया जाता है, जिसको कि हम शक्ति नाम से प्रसारित करते हैं। वैसे तो पहाड़ की हर महिला ही अपने आप में बहुत सशक्त है, पहाड़ की महिला सशक्त होने का ही पर्याय है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नाम कर रही हैं और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनसे आपको मिलवाएं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आपका भी उत्साह वर्धन होता है, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि अपने बीच से निकली हुई ऐसी महिलाएं जो शक्ति का पर्याय बन चुकी हैं, उनके बारे में आप सुने और आप भी प्रेरित हों कि शक्ति आपके अंदर है, आप में कोई कमी नहीं है, आप भी आगे बढ़े, हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और अपने सुझाव हमसे साझा करते रहें। यही उम्मीद है आपसे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपको पहाड़ की ऐसी ही सशक्त महिलाओं से मिलवाते रहेंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा दीपिका जी आपने, पहाड़ की सशक्त महिलाओं से आप मिलवाती तो रहती हैं अपने कार्यक्रम के जरिए। साथ ही देखिए, स्वास्थ्य की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है हर महिला के लिए, और अलग अलग तरह से कई समस्याओं से जूझती हैं महिलाएं, अक्सर वो नज़रअंदाज कर देती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अगले श्रोता जो हैं वो हैं नीलम द्रविता भावना, आप हल्द्वानी से इन्होंने पत्र भेजा है। लिखती हैं, 17 जून को प्रसारित डॉक्टर वीना तेजन से भेंटवार्ता, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जागरूकता से रोकथाम, इस विषय पर जो बातचीत की गई थी वो इन्हें बहुत रोचक लगी, जानकारी से भरी थी। और दीपिका जी, आपका शुक्रिया किया है उन्होंने कि आपने बहुत अच्छी तरह से उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने उतनी ही खूबसूरती से जवाब भी दिए। और ये एक ऐसा विषय था जिस पर जागरूकता की आवश्यकता होती है और हमें कई बार पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये है तो सही हमारी ज़िंदगी में। तो इस विषय को अपने कार्यक्रम में आपने शामिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये अपेक्षा कर रहे हैं, आगे इन्होंने अब एक और समस्या के बारे में भी लिखा है और चाहती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम सुनने की ये अपेक्षा रखती हैं। ऐसी आशा है कि ये जो आजकल की एक और बड़ी समस्या है मानसिक स्वास्थ्य से, तो शारीरिक रूप से तो हम है ही परेशानियां, लेकिन मानसिक रूप से भी कई परेशानियां हैं, तो उनसे भी संबंधित कुछ अगर आप भविष्य में किसी डॉक्टर से आप बातचीत करवाएं तो अच्छा रहेगा, ऐसी इन्होंने आपसे अपेक्षा की है।
0: हल्द्वानी से नीलम, द्रविता और भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम की सराहना की है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये ऐसा एक विषय, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में जागरूकता की कमी तो है ही, साथ ही साथ लोग इससे बचने की भी कोशिश करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और हमने कोशिश की कि डॉक्टर वीना तेजन से हम जितनी जानकारी उस 15 मिनट के समय में ले सकते हैं लें, और आगे में हमें उम्मीद है कि हम ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। और जैसा कि आपने हमें एक सुझाव दिया कि

0: हम मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत करें तो हमारी भी ऐसी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर बात करें जो महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। और ऐसे हम अपनी श्रोता बहनों से उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें सुझाव देंगे कि हमारे कार्यक्रम में किन मुद्दों पर बातचीत सुनना चाहती हैं, किस विषयों पर जानकारी हमसे चाहती हैं। वो भी अगर आप हमें लिखकर भेजें तो हमें बहुत खुशी होगी और आपके सुझावों के साथ हम अपने कार्यक्रम को और भी रोचक बना पाएंगे। धन्यवाद।
1: और दीपिका जी, एक पत्र जो हमें कुछ देर से मिला, मई माह के लिए ही ये पत्र आया था क्योंकि कार्यक्रम प्रसारित हो चुका था, तो जैसा कि बहनें आप जानती हैं कि हम इसको माह के समापन के अंक में लेते हैं, तो मैं उसको शामिल कर रही हूँ। तो ये हमें भेजा श्वेता वर्मा और प्रेमा वर्मा ने, बागेश्वर से ये पत्र हमें भेजा है
0: जी।
1: और ये लिखती हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं, इस विषय पर राष्ट्रपति और तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित श्रीमती हेमा थलाल से प्रभा पांडे की बातचीत जो थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। ये भी एक सशक्त महिला से बातचीत थी जिससे हम प्रेरित हुए। और सबसे अच्छी बात वही, एक बार फिर से दीपिका जी, जो कुमाऊनी में ये बातचीत थी
0: जी,
1: तो वो इन्हें और भी ज़्यादा पसंद आई और अपेक्षा करती हैं और चाहती हैं यही कि आगे भी ऐसी बातचीत आप साझा करते रहेंगे और हमें और भी महिलाओं से मिलवाते रहेंगे।
0: जी अंजू जी, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि पहाड़ की हर महिला ही सशक्त होने का पर्याय है। और हेमा थलाल जी से जो बातचीत हमने आपको सुनवाई उसके द्वारा भी हम आपको यही संदेश देना चाहते थे कि आप किस जगह पर हैं, आप कितने बड़े शहर में हैं, कितने छोटे शहर में हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी।
0: आप प्रगति करना चाहें तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए और कभी कभी ऐसी बातचीत सुनकर हमारे अंदर का सोया हुआ आत्मविश्वास जाग भी जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, हमारा ऐसे कार्यक्रम आप तक पहुँचाने का उद्देश्य यही रहता है, आप भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और आप वो कर सकती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपका हौसला जरूर बढ़ाते होंगे। और जब आप ऐसे पत्र हमें लिखकर भेजती हैं तो हमें लगता है, हमें महसूस होता है शायद हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें पत्र लिखते हैं, अपने सुझाव हमसे साझा करते हैं। और भी आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी सुझाव हो, आप हमसे साझा करना चाहें तो उनका हमेशा ही स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद।
1: और दीपिका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही क्योंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है, सशक्त महिलाओं का जिक्र होता है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, संघर्ष आते हैं, और ऐसे में जब कोई महिला आगे बढ़ती है उसके पास संसाधनों की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, लेकिन ये सब चीज़ें दरकिनार करते हुए वो अपनी ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करती हैं, तो सच में प्रेरणा से भरी
0: जी होती है। बिल्कुल प्रेरणा से भरी होती हैं। और हम देखते भी हैं कि पहाड़ में ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं है।
1: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसी महिलाओं से दीपिका जी अक्सर मिलवाती हैं, घर संसार हो चाहे अर्पण कार्यक्रम हो। बहरहाल, घड़ी की सुइयां दीपिका जी इशारा कर रही हैं कि बहनों से आज तो हम लेते हैं विदा, लेकिन चलते चलते बताएंगे आपको हमारा पता और व्हाट्सएप नंबर। तो हमारा पता पहले नोट कर लीजिए, कार्यक्रम घर संसार, बहनों की चिट्ठी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड संख्या है 2636-01। और
0: अगर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करना चाहती हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहती हैं तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं 9411001122 पर।
1: तो आज बहनों की चिट्ठी से मैं अंजू पांगती,
0: मैं दीपिका पंत
1: लेते हैं विदा। मिलेंगे जुलाई माह की बहनों की चिट्ठी में एक बार फिर। तब तक के लिए
0: नमस्कार।
2: बहनों, अभी आप पत्रोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों की चिट्ठी सेगमेंट सुन रही थी जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंजू पांगती और दीपिका पंत। तो हम तो यही कहेंगे बहनों, हमें पत्र जरूर लिखेगा, हमें इंतजार रहेगा। और अभी इस वक्त आपको भी इंतजार होगा एक खूबसूरत गीत का। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: बहनों, अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों हेतु चलाई जा रही योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। बहनों, हमारे देश की खूबसूरती इसकी विविधता में बसती है, इसलिए ज़रूरी है कि समाज का हर वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके तहत स्कूल, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवनों का निर्माण एवं विकास किया जाता है। साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। तो बहनों, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तभी एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो बहनों, इसी संदेश के साथ अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

मैनो आज के खूबसूरत और स्नेह भरे साथ का समय यहीं पर संपन्न होता है। आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थे दीपिका पंत। घर संसार कार्यक्रम से विदा लेने का समय है, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी मुस्कान पूरे घर को खुशियों से भर देती है। और इस समय बहनों अपनी रेडियो सखी संगीता तिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज

0: राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं चंपावत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं बल्कि ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है जो आने वाले दशकों तक चंपावत के विकास की मजबूत नींव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निर्णय ले रही है। श्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में चंपावत जिला चिकित्सालय में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
3: मेरी सेशेल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में 7 से 28 जून तक आयोजित चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अभियान के दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने उच्च हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता, वनस्पतियों, वन्य जीवों और हिमनदों का अध्ययन कर महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए। एक रिपोर्ट।
5: अभियान के दौरान कैमरा ट्रैप, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों की सहायता से बुग्यालों, हिमनदों, दुर्लभ वनस्पतियों तथा वन्य जीवों का आकलन किया गया। अध्ययन में हिमालयी थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, साइबेरियन वीजल और पाइका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी रेड फॉक्स, सीरो और हिमालयी मार्टिन की मौजूदगी के अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले। अभियान के दौरान हिमालयी मोनाल, स्नोकॉक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेमरगायर सहित कई दुर्लभ पक्षियों की भी उपस्थिति की गई। इसके अलावा लाइकेन, औषधीय पौधों, कीट पतंगों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी अध्ययन किया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
2: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिले में लगभग 2,42,000 मतदाता हैं जिनके विवरण का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई से मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
6: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000 है, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का ऐसा या फिर डिजिटाइजेशन प्रोसेस है इस समय फिलहाल। डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म है उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें।

0: 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं, उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं इस ऐप के बारे में, और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 1 महीने की रहेगी।
1: अल्मोड़ा में आयोजित 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का समापन कल होगा। महोत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प के साथ ही अन्य राज्यों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कुमाऊं महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना, साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
2: कुमाऊं महोत्सव पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, उनको एक मंच प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको हमने जिंदा रखना है। तो इसके लिए छोटे बच्चों को भी हम सिखाते भी हैं, मंच भी देते हैं, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्पण के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं उनके क्षेत्र में हो।
1: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की 23वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि अमर शहीद मेजर कंडारी का बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा तथा उनका त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। वहीं कल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई के लिए देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। शुभारंभ कर रहे हैं अनिल पांडे के गीत से। गायिका हैं शुभा मुद्गल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1316।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
0: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।

0: मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
1: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर अवनी गुर्जर रियांशी गुर्जर ओजस गुर्जर गुरदीप गुर्जर प्यारी बिटिया मीठी अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने वो लिखते हैं
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
1: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार रचनात्मकता आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
2: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी
0: जी। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
2: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को

0: इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा

0: सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
3: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार,

0: इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
0: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
1: ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
3: क्यों?
4: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला,
2: उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
4: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
4: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: हाँ बिल्कुल।
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
4: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया। अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
4: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: तू समझ गई है?
4: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
4: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी,

0: मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
7: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
6: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। तो शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ। ये लोकगीत समूह स्वरों में है।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। 2:15 होने को हैं। आप समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं।

0: यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने ये भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा

0: सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
4: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की

0: औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है संतुलित आहार में सब्जियों का महत्व। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजकुमार।
1: उपभोग या ग्रहण किए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों को हम आहार कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा एवं पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में मुख्यतः हमारे युवा और बच्चे परंपरागत अच्छे स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर जंक फूड की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान में हमारे देश की लगभग 1/4 जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 28.7 अंकों के साथ 125 देशों में 111वें स्थान पर है। हमारे देश के 16.6% बच्चे अल्पपोषित, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 3.1%, 18.7% बच्चे कमजोर और 35.5% बच्चे बौनापन से प्रभावित हैं। विश्व के 33% कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। देश के 53.6% लोग पेट से जुड़ी बीमारियों तथा 31.20% लोग अधिक वजन से ग्रसित हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की नई नई बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि, विकास, स्वस्थ एवं रोगमुक्त रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा नियमित रूप से ग्रहण करने के लिए जरूरी है। शरीर का आदर्श शारीरिक वजन के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी संतुलित आहार जरूरी है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त पोषण स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जन्म के समय बच्चों के वजन में सुधार और शिशुओं, बच्चों और किशोरों की उचित वृद्धि और विकास के लिए भी संतुलित आहार बहुत जरूरी है। आहार संबंधी होने वाली बीमारियों से बचने के लिए और बुजुर्गों को के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबे जीवन के लिए भी संतुलित आहार बहुत जरूरी है। प्रोटीन

एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, मांस आदि के पाचन के दौरान बने अम्लों को निष्क्रिय निष्प्रभावित करने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण उनके आहार में सब्जियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार सामान्य मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट 80 से 100 ग्राम, वसा 80 से 120 ग्राम, प्रोटीन 80 मिलीग्राम, कैल्शियम 80 से 90 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 370 मिलीग्राम, लोहा तत्व 29 मिलीग्राम, जिंक 13 मिलीग्राम, थायमिन 1.1 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 1.3 मिलीग्राम, विटामिन सी 65 मिलीग्राम और विटामिन ए 840 IU की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की को उपलब्ध

प्रोटीन 80 मिलीग्राम, कैल्शियम 80 से 90 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 370 मिलीग्राम, लोहा तत्व 29 मिलीग्राम, जिंक 13 मिलीग्राम, थायमिन 1.1 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 1.3 मिलीग्राम, विटामिन सी 65 मिलीग्राम और विटामिन ए 840 आयु की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की को उपलब्ध या प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के अन्य अवयव जैसे अनाज, फल, दूध आदि के साथ साथ 300 ग्राम सब्जियां जिनमें से 125 ग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, लाई, हरी प्याज और 75 ग्राम जड़ों वाली सब्जियां जैसे गाजर, मूली, गडेरी, जमीकंद तथा 100 ग्राम अन्य सब्जियों का उपभोग करना चाहिए। वर्तमान में सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे देश में 11.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जियों की खेती की जा रही है। इनका उत्पादन 213 मिलियन टन है। भारत के मुख्य सब्जी उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। विश्व में भारत का अदरक और भिंडी के उत्पादन प्रथम स्थान है। आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन, पत्ता गोभी में दूसरा स्थान है। हमारे देश के सब्जियों का उपभोग कम किया जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति सब्जियों की उपलब्धता कम है, 213 ग्राम के आसपास है और जो अनुसूचित मात्रा है वो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो जो लोग में सब्जियों के महत्व की जानकारी का अभाव है, साथ साथ उनकी कीमत अधिक होने के कारण हमारे देश के लोग सब्जियों का उपभोग कम करते हैं। प्रोटीन रक्त कोशिका पेशियों का मुख्य भाग है। इसकी कमी से मेरा संस रोग हो जाता है जिसमें बच्चों का वजन, ऊंचाई और उसकी उम्र या लिंग के अनुसार सही नहीं होता और कवासियोर कोर रोग जिसमें प्रोटीन की बहुत कमी हो जाने से हो जाता है। इसमें हमारे पेट फूल जाता है और सूजन हो जाती है। यह फलीदार सब्जियां जैसे सेम, मटर आदि में पाया जाता है। यह पाचन क्रिया को बढ़ाकर कब्ज को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जो सामान्य व्यक्ति को दैनिक कार्य करने के लिए 2100 से 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आलू, शकरकंद, अरबी, मटर आदि में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। हमारे शरीर के विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा उनका उचित संचालन एवं विकास के लिए विभिन्न लवणों की आवश्यकता होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा तत्वों की अधिक मात्रा में जरूरत होती है। सब्जियों खनिज लवणों की मुख्य स्रोत हैं। हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत के साथ साथ रोग मुक्त रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह आलू, गाजर, टमाटर, खीरा, पालक, फूलगोभी आदि में पाया जाता है। लोहा की कमी से रक्त की कमी हो जाती है। यह पालक, सलाद, पत्ता गोभी, मटर, हरे प्याज और गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी, पथरी, त्वचा में रूखापन, मुहासे आदि हो जाते हैं। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, चौलाई, पालक, पत्ता गोभी, हरी मिर्च एवं सेम इत्यादि हैं। विटामिन बी के विभिन्न स्वरूप जैसे B1 को हम थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं और B12 को कोबलामिन कहते हैं। इसमें B1 की कमी से खून की कमी या अनीमिया या बेरी-बेरी नामक रोग हो जाते हैं। यह शरीर की वृद्धि और जनन के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। यह सेम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरे मटर आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, गठिया आदि रोग हो जाते हैं। यह विटामिन हरी कच्ची सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत हरी मेथी, पालक, टमाटर, पत्ता गोभी व आलू हैं। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। यह हड्डियों के निर्माण के लिए और दांतों को नष्ट होने से बचाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग जैसे पैरों का टेढ़ा होना, मेरुदंड का सामान्य टेढ़ा होना, छाती के हड्डियों का बाहर आ जाना, ये विटामिन खनिज लवण जैसे फास्फोरस एवं कैल्शियम के उपयोग को नियंत्रित करता है। इसके मुख्य स्रोत हरे मटर, पालक, आलू, मिर्च, टमाटर एवं शलजम है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ये वसा विलय विटामिन है जो जनन क्रिया को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। इसके नियमित सेवन से जनन शक्ति का बनी रहती है और ये पत्तियों वाली सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, सलाद, अंकुरित दाने और सब्जियों के तेल में मुख्य रूप से पाई जाती है। सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर उन्नत तकनीक का उपयोग करके उत्पादन एवं उपलब्धता को बढ़ाकर आहार में सब्जियों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। सब्जियों की पोषकता युक्त या न्यूट्री फोर्टिफाइड किस्मों का विकास करके भी हम इनका उपभोग बढ़ाया जा सकता है। आहार में सब्जियों के महत्व की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हम सब्जियों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। घर के पिछवाड़े आसपास की जगह पर किचन गार्डन या पोषक वाटिका के रूप में विकसित करके आहार में सब्जियों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में घर के आसपास की जगह में सब्जियां उगाने की एक पुरानी और एक अच्छी परंपरा है। सरकारी योजना जैसे पोषण वाटिका, मिशन पोषण की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हम सब्जियों में आहार की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। हमारे देश में लगभग

0: से 35% सब्जियां उचित प्रबंधन न होने के कारण खराब हो जाती हैं। अगर उनको बचाकर भी हम उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी किस्में जिनमें सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम पोषकता युक्त या न्यूट्री फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं। इन किस्मों का उपयोग करके हम पोषकता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे फूल गोभी की किस्म पूसा बीटा केसरी, ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म में प्रो विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है। इसी तरह से आलू की किस्म कुफरी मानिक है, ये भी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश के द्वारा विकसित की गई है। इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें आलू की दूसरी किस्म जो आलू कुफरी नीलकंठ है, यह भी जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश से विकसित की गई, इस किस्म में भी एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है। शकरकंद की किस्में जैसे भू सोना है, ये किस्म भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरला द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म में प्रो विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है। शकरकंद की दूसरी किस्म जो इसको हम भू कृष्णा या किस है, ये किस केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरला द्वारा विकसित की गई है। इसमें भी एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है। इस तरह अन्य फसलों में भी इस तरह की किस्में विकसित की गई हैं, जैसे अपने धान की वैरायटी CR धान 310 है, गेहूं की VB2 है, मक्का की विवेक गुणवत्ता प्रोटीन 9 है, मसूर की पूसा अगेती मसूर है, मूंगफली की गिरनार 4 गिरनार 5 है। इस तरह की किस्में विकसित की गई हैं। इनमें अन्य किस्मों की बजाय न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो इनका भी उपयोग करके हम अपने पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। सब्जियों में उपलब्ध पोषक तत्वों को अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए जहां तक हो सके सब्जियों को ताजी हों तक और उन्हें खाने से तुरंत पहले ही पकाना चाहिए। कच्ची सब्जियों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सब्जियों को छिलने से पहले धो लें तथा काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए। छिलका ज्यादा मोटा नहीं उतारना चाहिए क्योंकि विटामिन छिलके के बिल्कुल नीचे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सब्जियों को ज्यादा देर तक पानी में नहीं भिगोना चाहिए क्योंकि इससे जल विलय विटामिन जैसे विटामिन B और विटामिन C का ह्रास हो जाता है। सब्जियों को उबालते समय कम पानी का उपयोग करना चाहिए और इस पानी को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि सब्जी ब्रांड में काम में लेना चाहिए। आज की रेडियो वार्ता से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि विकास लंबी स्वस्थ आयु के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है और इसमें सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः सब्जियों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।
1: संतुलित आहार में सब्जियों का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर राजकुमार से खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता अभी सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा शैलजा मसीह के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा किताबें पढ़ने की अच्छी आदत, आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें चर्चा सुनिएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा जिसमें आज कुमार केशव और कुमार विशु के गाए भजन आप सुन सकेंगे। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम सुना जा सकेगा जिसमें आज की बातें का विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, चर्चा सुनिएगा मिश्रित खेती के लाभ। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज शाम श्रोता सुनेंगे। शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रमों में सबरस होगा रात 8 बजे और रात 10 बजे भी आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एक ही फनकार और आज फनकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कदम। श्रोताओं, 50 और 60 के दशक में मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा कामिनी कदम को हम आज खास तौर पर याद कर रहे हैं। आज 29 जून उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें नमन करते हुए उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के चंद नगमे पेश कर रहे हैं एक ही फनकार में।

तो श्रोताओं, कामिनी कदम का जन्म 3 अगस्त 1933 को बॉम्बे, जो कि आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में उनका नाम माणिक कदम के रूप में जन्म हुआ और उनका मूल नाम जो है वो माणिक कदम था। बाद में उन्होंने मराठी सिनेमा में प्रवेश जब किया तो स्मिता नाम अपनाया और हिंदी फिल्मों में जब वो आईं तो कामिनी कदम के नाम से उन्हें बॉलीवुड में जाने लगा। 1950 और 60 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। मूल रूप से वो मराठी हैं और 1955 में आई फिल्म येरे माजिया मगालिया में कामिनी का स्क्रीन नाम जो था, स्क्रीन नाम उनका स्मिता था और ये किसी मराठी फिल्म में उनकी पहली उपस्थिति थी। और बॉलीवुड में आने से पहले कामिनी ने कई मराठी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में, जैसा कि मैंने बताया, वो कामिनी कदम के नाम से जानी जाती रहीं। और 1958 में उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म तलाक के साथ, जो कि साल 1958 में रिलीज़ हुई।

तो श्रोताओं, तलाक फिल्म के लिए 1959 के फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ फिल्म महेश कौल और मुखराम शर्मा की यह फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए भी इस फिल्म को नामांकन मिला। राजेंद्र कुमार के साथ कामिनी कदम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी सफल साबित हुई, जिसके चलते संतान 1959 में और माँ बाप 1960 में ये फिल्में प्रदर्शित हुईं और इन फिल्मों के ज़रिए सामाजिक रूप से परिवार की जो भूमिका थी उसको विशेष रूप से इन फिल्मों में दर्शाया गया और दर्शकों ने इन फिल्मों को बेहद पसंद भी किया।

1958 से 1961 तक हिंदी सिनेमा में अपने करियर के दौरान कामिनी कदम ने स्कूल मास्टर, मियां बीवी राजी और सपने सुहाने जैसी कई फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्में दर्शकों ने बेहद पसंद भी की। कामिनी कदम 29 जून साल 2000 को इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गई और उनकी जो फिल्में आज हम देखते हैं, जो गाने सुनते हैं, तो उन्हें हम याद करते हैं और करते रहेंगे ऐसी अदाकारा को।

अभी आप सुन रहे थे कि फनकार आज फनकार थीं मशहूर अभिनेत्री कामिनी कदम। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, अपराह्न के 3 बजे हैं, पेश है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जीवन एक राग में बजने वाला साज नहीं, इसके साथ सब रंग जुड़े हैं, खुशी के, गम के, आह्लाद के, विषाद के, विरह के, उदासी के, तो खुशियों के कई रंग भी हैं। एक मुकम्मल इंद्रधनुष आप कह सकते हैं। 7 रंगों के ख्वाब हों या 7 रंगों के सुर, सभी हमारी जिंदगी से वाबस्ता हैं। रंग हैं तो जिंदगी में बहार है, खुशियां हैं, और इन्हीं से हमारी जिंदगी की एक खुशनुमा, एक प्यारी सी लहर भरी जिंदगी का मार्ग प्रशस्त होता है, और ये पल पल हमारे साथ रहते हैं कुछ इसी तरह।

कशोतों, ये बेहद खूबसूरत नगमा था ब्लैकमेल फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की, बोल राजेंद्र कृष्ण के और तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना की।

सच जिंदगी की भाग दौड़ में, आपाधापी में जब चंद लम्हे सुकून के मिले तो जिंदगी गुलजार हो जाती है, और इसी फुर्सत को ढूंढते हैं हम, और कोशिश यही रहती है कि कभी तो ये मंजिल मिले। साहिल पे रुक गए थे जरा देर के लिए, साहिल पे रुक गए थे जरा देर के लिए, आंखों से दिल में कितने समंदर उतर गए।

लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह के युगल स्वरों में मौसम फिल्म का ये दो गाना आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा था और मदन मोहन का संगीत था। तुम जो साथ हो तो जिंदगी का सफर आसान लगता है, ये जमीन ये आसमां गा उठता है और दिल बेफिक्री से कुछ यूं गुनगुना उठता है।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर को अभी आपने सुना आंचल फिल्म में। गीतकार थे प्रदीप, संगीत सी रामचंद्र का। चांद चेहरा जुल्फ दरिया, बात खुशबू दिल चमन, एक तुझे देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे।

हाथ की सफाई। इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा था और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत था।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो श्रोताओं, प्रोग्राम को ले आए हैं हम खूबसूरत मोड़ पर, यानी अब सदाबहार फिल्मी गीतों का आखिरी नगमा पेश है फिल्म आंधी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गुलजार के बोल हैं और आर डी बर्मन ने तर्ज बनाई है।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। हमारी सभा के सभी प्रसारण आप मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पिथौरागढ़ और 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम बागेश्वर से भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी साथ में प्रशांत कुमार।

0: दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1450 हो गई है। हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज

0: उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्र ने कहा कि इस तरह की बातचीत न तो नई है और न ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने ये भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलस्वर में आइए आज सुनते हैं शैलजा मसीह का गाया ये लोकगीत।

शैलजा मसीह के गाए इसी कुमावनी लोकगीत के साथ आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रूपरेखा, हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सभा में रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर होगा पब्लिक स्पीक कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर में शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में युवा साथियों से बातें होंगी किताबें पढ़ने की अच्छी आदत विषय पर, साथ ही आज के दिन के इतिहास से जुड़ी जानकारी युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय होगा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। भक्ति संगीत में शाम 6:41 पर आज आप सुनेंगे कुमार केशव और कुमार विशु के गाए भक्ति गीत। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम में आज बातें होंगी खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर और चर्चा होगी मिश्रित खेती के लाभ विषय पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर पुनः फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत सुनिएगा रात्रि 8:00 सब रस कार्यक्रम में और रात्रि 10:00। ये थी रूपरेखा इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी कल की पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। प्रातः 6:05 पर विचार बिंदु के पश्चात 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत आराधना। प्रातः 6:40 पर आज की बात, 6:45 पर देशगान और 6:50 पर होगा कार्यक्रम विविधा। श्री रामचरित मानस से 140वां प्रसंग आप सुनेंगे कल प्रातः 7:10 पर। कुमावनी लोकगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के अंतर्गत। शास्त्रीय संगीत सुनिएगा कल प्रातः 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। कुमावनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल सुबह 11:30 पर लोकसुर कार्यक्रम में और दोपहर 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। दोपहर 12:30 पर घर संसार माफ कीजिएगा दोपहर 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में कल बहनों से चर्चा होगी घर का कूड़ा कैसे कम करें विषय पर। साथ ही बहनें सुनेंगी कूड़ा करें कम तो स्वस्थ रहेंगे हम विषय पर। थाना बाजार अल्मोड़ा माँ सुनंदा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी श्रीमती ज्योति पांडे और श्रीमती बीना पांडे से मंजू बोरा की क्षेत्र संकलित बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा कल दोपहर 1:30। दोपहर 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। हमारे लखनऊ केंद्र से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कल शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कलाकार होंगे गिरीश सिंह बोरा। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में कल युवा साथियों से बातचीत होगी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस और अपडेट रहें विषय पर। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत युवा साथियों को जानकारी दी जाएगी दादा भाई नौरोजी के बारे में। उत्तरायण कार्यक्रम में कल शाम 5:45 पर चर्चा होगी दादा भाई नौरोजी पुण्यतिथि पर, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म पर। भक्ति संगीत सुनिएगा कल शाम 6:41 पर। कल शाम 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम में बातें होंगी जैविक खेती के लाभ विषय पर, चर्चा होगी विकसित खेती के लिए प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी नवाचार विषय पर, खेती बचाओ अभियान के तहत खाद्य तेल मिशन पर क्षेत्र संकलित बातचीत किसान भाई सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन विषय पर डॉक्टर कंचन आर्या से भेंटवार्ता। हमारी कल की दोनों सभाओं में फिल्म संगीत

आप सुनेंगे सुबह 9:05 पर गीत नेचर कार्यक्रम में, सुबह 10:35 पर सुरबहार, सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत, शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत फिल्म संगीत प्रसारित होगा। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे कल सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8 बजे सबरस कार्यक्रम के तहत और कल रात्रि 9:30 पर होगा फरमाइशी गजलों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र अंजलि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त की जो ना ही बोलती है, ना हंसती है और ना ही शिकायत करती है, लेकिन हर वक्त हमारे साथ रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किताबों की। किताबें सिर्फ कागज़ के पन्नों का ढेर नहीं होती, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की सच्ची साथी होती है। दोस्तों, अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें, सबसे बड़ी सोच और सबसे बड़े विचार सब किताबों में कैद हैं। किताबें ज्ञान का खजाना है, ये हमें नई दुनिया दिखाती है। दोस्तों सोचिए, अगर किताबें ना होती तो हम अपने पूर्वजों के अनुभवों को कैसे जानते। किताबें हमें ना सिर्फ पढ़ाई में मदद करती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, हम नए शब्द सीखते हैं और हमारी बोलचाल सुधरती है। किताबें हमें अकेलेपन में भी साथ देती हैं, और आज के समय में जब लोग मोबाइल में खोए रहते हैं तो एक अच्छी किताब पढ़ना आपको सुकून दे सकता है। किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं होती, ये एक एहसास होता है। दोस्तों सोचिए, आप एक ठंडी शाम में अपनी पसंदीदा किताब लेकर बैठे हैं, बाहर हल्की हवा चल रही है और आप किसी रोचक कहानी में डूब गए हैं। उस वक्त ना आपको सोशल मीडिया याद आता है और ना ही कोई तनाव, बस आप और आपकी किताब। यही रिश्ता है किताब और इंसान का, ये हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। किसी किताब की खुशबू, उसके पन्ने पलटने की आवाज़, ये सब हमें बड़ा सुकून देता है जो किसी मोबाइल स्क्रीन में नहीं मिल सकता। दोस्तों किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो एडवेंचर की किताबें हैं, अगर कहानियों का शौक है तो उपन्यास है, कविताओं का मन है तो शायरियाँ हैं, ज्ञान चाहिए तो विज्ञान, इतिहास और साहित्य की किताबें हैं, और अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है तो प्रेरक किताबें हैं। दोस्तों सोचिए, APJ अब्दुल कलाम अगर किताबों से प्रेरणा नहीं लेते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते। महान लोगों की जीवनी पढ़ने से हमें पता चलता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी इंसान कितनी ऊंचाइयां छू सकता है। किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये हमारी सोच बनाती है। जब हम अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर बात का एक दूसरा पहलू भी होता है। किताबें हमें सिखाती हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर इंसान का नज़रिया अलग हो सकता है। जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनकी सोच गहरी होती है, उनकी बातचीत में मिठास होती है और हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि किताबों से सीखने वाले लोग जानते हैं कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों आजकल हर कोई कहता है तनाव बहुत है, नींद नहीं आती, लेकिन क्या आपको पता है कि किताबें पढ़ना दिमाग के लिए एक्सरसाइज है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, याददाश्त मजबूत होती है, और रिसर्च बताती है कि सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ने से आपका तनाव कम हो सकता है। आप किसी रोचक कहानी में डूब जाते हैं और सारी परेशानियां कुछ समय के लिए गायब हो जाती है, और यही वजह है कि किताबें हमें मानसिक शांति देती है। तो दोस्तों एक बार सोचिए, एक किताब को हाथ में लीजिए और उसे ध्यान से देखिए, वो चुपचाप आपके सामने है। वो किताब कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके पन्नों के अंदर कहानियों की दुनिया है, अनुभवों का समंदर है और सपनों का आसमान है। किताबें बोलती नहीं हैं, लेकिन जब आप उसके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो कह रही हो कि मुझे पढ़ो, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बात। अब कार्यक्रम में चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों आज के समय में मानसिक तनाव एक ऐसी समस्या बन गया है जो न केवल हमारे मन को बल्कि पूरे शरीर को भी प्रभावित करता है। लगातार तनाव में रहने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और वहीं दूसरी ओर जब मस्तिष्क किसी बीमारी या चोट से प्रभावित होता है तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में फिजियोथेरेपी की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आती है। तो दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं न्यूरोलॉजिकल रोगों के उपचार में फिजियोथेरेपी का योगदान विषय में डॉक्टर नेहा से हमारी ये खास भेंटवार्ता।
1: बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
2: पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर टॉक शो।
1: मैं सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और इसका हमारे स्वास्थ्य में क्या महत्व है।
2: फिजियोथेरेपी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल थेरेपी है और ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट दवाइयों का यूज नहीं करता बल्कि कुछ एक्सरसाइजेस, मैनुअल थेरेपी और कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स और मशीनों के द्वारा पेशेंट का दर्द कम करता है और साथ में ही मरीज के मूवमेंट और मांसपेशी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। दूसरा चीज जो आपने पूछा कि फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो यही है कि जो भी पेन है, चाहे वो नया पेन है चाहे वो पुराना पेन है, जिससे हम मेडिकल टर्म में इसके ऊपर क्रॉनिक पेन होते हैं, चाहे वो बैक पेन है, गर्दन का दर्द है, मांसपेशी का दर्द है, कोई अर्थराइटिस है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा जो भी सर्जरी के केसेस होते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे घुटना बदलते हैं, उसके बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत क्रूशियल रोल है ताकि आप अपने नॉर्मल रूटीन में या नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी आ सकें। तो आपका सर्जरी की फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो वृद्ध जन है, जेरियाट्रिक पेशेंट है, उनमें फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो मसल वीकनेस है वो आना शुरू हो जाता है, जॉइंट की मोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। फिजियोथेरेपी आपकी मसल्स को इम्प्रूव करने में, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में और मोबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा

0: जितने भी न्यूरो के पेशेंट हैं, लकवे के पेशेंट हैं, पार्किंसन के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, इन सब में फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट होती है आजकल।
1: जी मैम, सर आजकल मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों में कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं?
0: ये एक बहुत अच्छा और मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल फोन और कंप्यूटर पे हम लोग घंटों तक टाइम स्पेंड करते हैं, और सबसे ज्यादा इस चीज में जो असर पड़ता है वो पड़ता है हमारी रीढ़ की हड्डी में। इवन हमारी ओपीडी में भी डेली बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि बताते हैं तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा काम करते हैं या फोन ज्यादा यूज करते हैं, तो उन पेशेंट में स्पेशली आप देखेंगे कि गर्दन का दर्द हो गया, इसके अलावा कमर दर्द हो गया, और मसल्स में खिंचाव आना, हाथों में झंझनाहट, पैरों में सुन्नपन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो यही जो चीजें हैं वो आपके यंग पेशेंट्स में भी देखने को मिल रही है आपको, मतलब 15 साल 20 साल के बच्चे भी आते हैं जिनमें वो सिम्टम्स अर्ली एज में ही आना शुरू हो जाता है।
1: जी मैम, मैम लंबे समय तक मोबाइल देखने से गर्दन और पीठ में दर्द क्यों होने लगता है?
0: जब आप लंबे समय तक बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर फोन पे काम करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि एक टाइम के बाद आप जो कमर है ना वो झुकना शुरू हो जाती है, एक की हड्डी झुकना शुरू हो जाती है जिसके हम मेडिकल टर्म में स्लाउच पोस्चर बोलते हैं, और बहुत सारे केसेस में फॉरवर्ड हेड नेक पोस्चर भी देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे आप आपका जो बैठने का तरीका है, आप जब लंबे टाइम के लिए बैठते हैं तो जब आपकी कमर झुकना शुरू हो जाती है तो आपकी जो भी पीछे की मसल्स हैं, जो भी बैक की मसल्स हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर पेन कॉज करती हैं। एक चीज तो ये होता है, दूसरा चीज जब आप लंबे टाइम के लिए फोन यूज करते हो तो आपकी जो गर्मी की मांसपेशियां हैं वो टाइट होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से भी आपको दर्द होना शुरू हो जाता है।
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि सही बैठने की मुद्रा क्या होनी चाहिए ताकि हम इन समस्याओं से बच सकें।
0: तो ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मुझसे डेस्क जॉब वाले लोग होते हैं या आईटी सेक्टर वाले लोग होते हैं, तो पहली चीज जब भी आप कंप्यूटर पे या फोन पे कुछ भी काम कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज, जब आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपना कोहनी से सपोर्ट लीजिए मेज में। आप ऊपर ये देखोगे, नोटिस करोगे कि जब आप एल्बो से सपोर्ट लेते हैं टेबल्स में तो आपका वो कंधे को भी सपोर्ट करेगा और आपकी पीछे बैक की और गर्दन की मसल्स को भी सपोर्ट करेगा। तो ध्यान रखिए जब भी आप बैठ रहे हैं तो एल्बो का सपोर्टेड होना मेज से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कोशिश करिए कि आपकी बैक पे जितनी भी देर आप बैठे हो आप पीछे से एक बैक कुशन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जब आप बैठ रहे हैं तो नेक्स्ट आपका जो कूल्हा और आपका जो घुटना है, आपका हिप और जो नी है, वो एक सीधी लाइन में रहे, मतलब कि आपका घुटना एक तो एंगल से नीचे नहीं होना चाहिए, वो जितना नीचे रहेगा आपको उतना ज्यादा बैक में स्ट्रेन पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अर्गोनॉमिक्स में या पोस्चर से तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर उनसे बात करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
1: मैम, गलत मुद्रा में बैठने से भविष्य में कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है?
0: लंबे टाइम के लिए गलत पोजिशन में बैठते हो तो जो सबसे ज्यादा नीचे वाला हिस्सा कमर का हिस्सा और आपको गर्दन का हिस्सा वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, तो आपको बैक पेन, नेक पेन इश्यू हो सकते हैं, धीरे धीरे नस में दबाव होना शुरू हो जाता है और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हाथों में पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन आ रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे आपकी हड्डी में भी चीजें आने शुरू हो जाते हैं, डिस्क हर्ज, हर्निएटेड डिस्क जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत सारे इसमें हम गलत तरीके से बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी का जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो भी चेंज हो जाता है, और ना सिर्फ आपके जॉइंट्स, इसके अलावा आपके लंग्स भी जब आप गलत

0: दिक्कत होने लगती है और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ये भी हम फेस करते हैं कि जब वो ज़्यादा देर के लिए फोन देखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो उनको चक्कर आना, सर दर्द, ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है।
1: जी मैम, मैम अगर किसी को लगातार गर्दन या पीठ में दर्द हो रहा हो तो उसे कब फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए?
0: पेन आपका बिल्कुल नया पेन है, बहुत ज़्यादा है, सीवियर पेन है, तो आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आपका दर्द पुराना है, 1-2 हफ्ता हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा, या बार बार इस वजह से वो बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर दर्द की वजह से आपका जो जॉइंट है उसमें स्टिफनेस आ रही है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है।
1: जी मैम, मैम आजकल बहुत से बच्चे पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में कई कई घंटों तक बैठते हैं,

0: दर्द है। इसके अलावा अगर दर्द की वजह से आपका जो जॉइंट है उसमें स्टिफनेस आ रही है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है।
1: जी मैम। मैम आजकल बहुत से बच्चे पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में कई कई घंटों तक बैठते हैं, तो ऐसे में उन्हें अपनी गर्दन और पीठ को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: मैं मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपने पोस्चर पे काम करिए, अपने बैठने के तरीके पे काम करिए। आप अपने पोस्चर पे जितना काम करेंगे आपकी 50% डिस्टर्बेंस भी ठीक हो जाएगी। तो सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज ब्रेक लीजिए, मतलब मैं बोलती हूँ कि जो भी लॉन्ग आर्म सिटिंग्स हैं या लंबे टाइम तक के लिए एक जैसी पोजिशन में बैठना, तो बिल्कुल अवॉइड करिए। हर 20 से 30 मिनट या एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का ब्रेक लीजिए, और आप कोशिश करिए कि 2-3 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा सा वॉक कर लें या कोई भी नॉर्मल मूवमेंट कर लें, बॉडी का नॉर्मल स्ट्रेचेस कर लें, ये सारी चीजें करें। इसके अलावा पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर में रिस्पॉन्स होता है, तो हाइड्रेशन रहना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के यूथ जो है वो इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है। जो भी चीज आप फुटबॉल क्रिकेट को भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट हो गया या फिर वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, जो भी आपको पसंद है, मतलब फिजिकली आपको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और पोस्चर अपना मेंटेन करिए, प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स की पोस्चर की जानकारी आप फिजियोथेरेपिस्ट से ले सकते हैं और उनकी जो भी एडवाइजेस हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं।
1: जी मैम। मैम अब मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी ताकि वे मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करते समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें।
0: मैं वही हर बार बोलती हूँ कि पहली चीज तो अपने पोस्चर काम के लिए हमेशा फोन लैपटॉप जो भी है वो आपके आई लेवल पे रहें। जितना आप झुक के काम करेंगे, जितना गर्दन झुका के काम करेंगे, आपको भविष्य में प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। दूसरा चीज आप फ्रीक्वेंट ब्रेक लें, हर 20 से 30 मिनट में ब्रेक लें, वॉक पे जाएं, रनिंग पे जाएं, जो एक्टिविटी आपको पसंद है वो आप करें। उसके अलावा कली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ में आप कोशिश करें जैसे मेडिटेशन है या प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो जरूर अपने डेली रूटीन में आप शामिल करें।
1: जी मैम, मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारी ये खास भेंट वार्ता। अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: दादी कौन सा प्लांट है?
6: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: तो अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर, और बताते हैं आपको कि आखिर क्यों है आज का दिन इतिहास के पन्नों में खास। 29 जून वर्ष 1901 में आज ही के दिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीर थे। इनका नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1931 में जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट PK आयंगर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज के इतिहास की बातें। अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो सब कार्यक्रम में हो चला है समय हमारे आज के प्रश्न का। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, सल्प चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है महर्षि सुश्रुत को। अब नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म कब हुआ था? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतजार आपके मैसेजेस का। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल एक नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सभा दगड़ियों के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार। दगड़ियों आज 29 जून छे। आज हम मनोण लाग रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधी दिवस। दगड़ियों यो दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून हूँ मनाई जा। यो दिवस उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों विशेषताओं उन्हें समस्याओं और उन्हें संरक्षणक महत्व प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य मनाई जा। उष्ण कटिबंधी क्षेत्र पृथ्वी का उपभाग छन जो मध्य रेखा के आसपास स्थित छन और जैव विविधता भरपूर होनी। उष्ण कटिबंधी क्षेत्र पृथ्वी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभोनी। दड़ियों इन क्षेत्रों में विशाल वर्षावन अनेक प्रकार के पौध जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधन पाई जानी। यो क्षेत्र जलवायु के नियंत्रित कर सकनी, वर्षा चक्र बनाए रखना और कार्बनक अवशोषित करना में सहायक होनी। दगड़ियों आज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन जैव विविधता में कमी प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का सामना करने यो समस्याओं प्रभाव मानव जीवन और पर्यावरण द्वारा पर पड़ो। दगड़ियों अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाने का उद्देश्य उष्ण कटिबंधी देशों की चुनौतियों के समझण, पर्यावरण संरक्षण के बढ़ावा देन और सतत विकास के लिए लोगों के प्रेरित करना है। तो दगड़ियों अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधी दिवस हमन के प्रकृति प्रति अपन जिम्मेदारी याद दिलो। उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों संरक्षण केवल इन क्षेत्रों के न बल्कि पूर्व पृथ्वी भविष्य लीजिए आवश्यक छे। तो दगड़ियों यो तो छे आप लोगों दगड़ बातचीत और अब कार्यक्रम में अगिल सुनू दीवान कनवाल और लता पांडे गई हुई शोलो की।

0: घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: और दुगड़ियों कार्यक्रम है कि सुनो किशन चंद सिराड़िया और उन्हें दुगड़ियों गई हुई शो लोकगीत।

0: पुदगड़ी वाला आप लोग नल किशन चंद सिराड़ी और उन्हें देख लियो गई फीस लोग की सुनो और अब कार्यक्रम में कि सुनो कि हम कसी होम स्टे द्वारा रोजगार प्राप्त कर सकनो होम स्टे के लिए कि होम स्टे आज रोजगार एक भल साधन बढ़ते जानो बहुत सारे युवा आज होम स्टे में कार्य करने लग रही तो इन सब बातों पर आज हम आपके एक जानकारी सुन लग रही चौसू बंगला बैजनाथ गरुड़ निवासी चंद्रशेखर पांडे द्वारा करी गई छह संकलित भेंटवार्ता।
1: नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर पांडे जी से जो कि ग्राम चौसू बंगला ब्लॉक गरुड़ जिला बागेश्वर के रहने वाले। आज इनसे हम बातचीत करेंगे होम स्टे के बारे में। तो सबसे पहले तो पांडे जी आपका स्वागत है हमारा क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में।
2: जी सर।
1: जी तो पांडे जी आप हमें बताइए कि आपने होम स्टे अपना कब शुरू किया था?
2: सर तकरीबन 2020 में हमने शुरुआत की थी सर होम स्टे की।
1: 2020 में?
2: जी सर।
1: अच्छा, आप

0: इससे पहले क्या करते थे?
1: मैं मुंबई में था, 20-22 साल मैंने मुंबई में काम किया। मुंबई में काम कर सौ परिवार सहित मैं गांव लौट आया। पूरा परिवार मिलकर हमने एक भ्रामरी होम स्टे करके हमने यही गांव में बना रखा है, जो तकरीबन हमारे गरुड़ ब्लॉक है, 8 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये होम स्टे स्थित है सर।
0: अच्छा, इसको करने से पूर्व आप बाहर कार्य करते थे?
1: तो जी
0: पांडे जी, अभी होम स्टे आपने जब ये शुरू किया तो होम स्टे शुरू करने के लिए आपने कहीं से आर्थिक सहायता ली?
1: जी सर, इसका जब हमारी उत्तराखंड सरकार की योजना आई थी होम स्टे योजना सर, उसमें मैंने आवेदन तो किया था, बट हमारे पूर्वजों का घर था उसमें वो जियो अलाउ नहीं हुआ, फिर 143 इसमें करने में दिक्कतें आई, तो बट हमने बना लिया सर। हमने मन में इच्छा थी कि होम स्टे बनाए, तो पूरा परिवार के सहयोग से हमने बना लिया सर, होम स्टे बनाए।
0: होम स्टे में आपने कितने कमरों का होम स्टे बना रखा है?
1: सर इसमें हमारे 2 डिलक्स सेट है, इसमें हमारा जैसे कि एक रूम में 2 बेड लगे हैं, 4x6 के 2 बेड लगे हैं, इसमें टॉयलेट बाथरूम वेस्टर्न टाइप का अवेलेबल है, साथ में किचन है, आगे बालकोनी है, पीछे बालकोनी है, इस टाइप के रूम्स हैं सर इसमें।
0: अच्छा पांडे जी, जो ये आप कह रहे हैं ना, इसके इसको करने में एक स्कीम आई थी और उस स्कीम की सहायता से जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इसको कर सकते हैं, तो कितने आपकी आर्थिक सहायता इसमें कितने की मिल रही थी?
1: सर इसमें हम लोग ज्यादा मैक्सिमम 35 लाख तक का हम लोग यहाँ से ऋण ले सकते हैं। मैक्सिमम 6 कमरे तकरीबन अपन बना सकते हैं। अभी तो जियो में इसको चेंजेस भी हो रखा है और काफी 50% सब्सिडी है, चाहे लाइट बिल से हो या कई चीजें, उसमें बहुत बड़ा गवर्नमेंट सहयोग कर रही है। और स्वरोजगार सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर आजकल लोग होटलों के अपेक्षा होम स्टे को बहुत पसंद कर रहे हैं।
0: अच्छा, मैं जो आप भोजन कराते हैं, हमारे जो बाहर के पर्यटक आते हैं,
1: जी सर,
0: तो उनको कौन सा भोजन कराते हैं?
1: हमारा एक बड़ा पहल है कि हम पहाड़ी जो खाना है हमारा, जैसे मडुए की रोटी हो, या फिर हमारा पहाड़ी में नौनी कहते हैं, या मक्खन है, या फिर घी है, ताजा घी है, गाय भैंस का हमारा जो दूध देते हैं ताजा दूध है, दही है, इवन साग सब्जी हम पॉली हाउस से अवेलेबल करते हैं, और घर में जो भी हमारे दाल हो या फिर उनके लिए सब्जियां तरकारी वगैरह हम बनाते हैं, वो सब हमारा जैविक है, ऑर्गेनिक, अपने फार्म हाउस से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और लोग पसंद करते हैं उसको और काफी इंजॉय करते हैं, ताकि हम जानते ना के बराबर हम सामान ले आते हैं, मोस्टली हमारे घर में ही अवेलेबल है, ताकि लोग खा के बड़ा इंजॉय करते हैं सर। इंटरेस्ट लेते हैं।
0: इसका जो भुगतान है कितना लेते हैं?
1: इसमें जैसे कि हमारा एक रूम है, एक रूम में 2 लगे सर, इसमें टॉयलेट बाथरूम किचन की जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसमें 2 एडल्ट 2 चाइल्ड यानी कि 2 मेल फीमेल जो है परिवार आता है, यानी कि 4 लोग, 2 बच्चे हो गए, मियां बीवी 2 लोग हो गए, 4 लोगों के लिए हमने इसमें 4,200 रुपए रखा हुआ है। बस अगर इसमें एक आता है तो हम वही डिवाइडेड 4 कर दे, ताकि उसको किराए भाड़ा न पड़े, उसमें खाना भी है, लंच भी है, नाश्ता भी है, इवन अनलिमिटेड चाय है, जो भी डिमांड करते हैं वो हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कोई बिल नहीं होता, उसी 4,200 में 4 लोग के लिए अवेलेबल कराते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट 2 आधा कर देते ताकि उनको भी वर्डन ना आए, सिंगल आदमी आए तो हम उसमें 1,000 प्रोवाइड कराते, 1,000 में खाना पीना रहना सभी उनमें सारी व्यवस्था इनको करते हैं सर।
0: यानी कि आपके वहाँ चाहे तो सिंगल आदमी आए या फिर कोई फैमिली आए, तो आप सभी को वो रूम अवेलेबल करा लेते हैं।
1: जी,
0: सड़क से कितनी दूरी पर है आपका होम स्टे?
1: सड़क हमारी सर, हमारा जो मेन बैजनाथ मटे मोटर मार्ग है वो पक्का रास्ता है, वहाँ से 1 किलोमीटर में कच्चा रास्ता पड़ता है, और ये कच्चा रास्ता भी अवेलेबल आ जाती है, घर तक आ जाती है। कभी बारिश का मौसम होता है तो बाय डिफॉल्ट नहीं पहुँच, थोड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी नीचे रोड पे ही खड़े कर देते हैं, और बाकी जब बारिश कम होती है तो ले आते हैं। मैक्सिमम 365 दिन में मुश्किल से हमें 30 या 35 दिन का ऐसा सामना करना पड़ता है, बाकी फिलहाल सारे वाहन है ऑल टाइम में अपने घर पे पहुंच जाते हैं, होम स्टे तक पहुंचते हैं।
0: ये तो बढ़िया बात है पांडे जी, आपने बताया उनको हम अपने घर का खाना खिलाते हैं जो हमारे फार्म हाउस में उपलब्ध रहता है।
1: जी सर,
0: तो ये जो आप हमारा पारंपरिक जो भोजन आप करवा रहे हैं उनको, पांडे जी आज पूरा विश्व वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष के रूप में भी मना रहा है, और अनाज आप अपने घर में उगा भी रहे, कौन कौन सा अनाज उगाते हैं आप अपने घर में?
1: सर हमारे यहाँ काले चावल हों, काले गेहूँ, लाल चावल है, मड़ुआ है, सफेद मड़ुआ है, और दलहन हो गए, और मैक्सिमम हमारे यहाँ जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं जैसे कौनी है, झुंगूरा है, परंपरागत जो खेती होती है सर, वो उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि हमारा जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिस्थिति है इसमें हमारा जो पूर्वजों ने जो अन्न को उगाया था वहाँ हम फिर से एक नई पहल पेश की है, ताकि लोग उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चुरकानी है, भटकी चुरकानी कहते हैं, या फिर के दुबके बनाते हैं, या फिर लाल चावल की खीर बनाते हैं, इस तरह से जो भी पहाड़ी व्यंजन होते हैं सर, हमारा लक्ष्य उसी की

0: कि अपनी पहाड़ी की संस्कृति और जो हमारा खाना है उसको हम प्रोवाइड करा सकें, ताकि लोगों को एक अलग से खाना खाने को मिले। और ये सारे जितने भी खाने ये पूरे ऑर्गेनिक जैविक मिलेंगे आपको, इसमें कोई केमिकल्स या यूरिया और डीपी से अलावेल नहीं होते सर, ये उसे मुक्त होते हैं, रासायन मुक्त है सर।
1: यानी कि उनको एकदम पौष्टिक खाना मिले।
0: जी जी
1: पाणी जी, मैंने सुना हुआ है कि आप जो हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनका भी उत्पादन करते हैं।
0: जी जी जी,
1: तो कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उत्पादन आप कर लेते हैं?
0: हाँ सर, जैसे कि हमारे यहाँ पर आप देखेंगे अश्वगंधा है, कैमोमाइल है, और लेमन बाम है, लेमन ग्रास है, डैंडेलियंस है, रोजमेरी है, और जीरेनियम्स है, और मीठी तुलसी है, रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है, और इसी के साथ साथ सर लेमन ग्रास पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। को उगाने के साथ साथ सर हमारा एक सपना था कि हमारे यहाँ जो भी टूरिस्ट प्लेस आए हमारे होम स्टे में, ताकि उनको ओरिजिनल चाय मिले यहाँ का और जड़ी बूटियों का निवारण मिले, इस तरह से हम लोग ने जड़ी बूटियाँ भी खेती के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस रेडी करके बाजार में देने का भी काम करें।
1: पाणी जी, जो ये जैविक खेती है ना
0: जी,
1: इसको करने के लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया आपने?
0: जी जी, जैविक खेती के लिए सर कृषि विभाग द्वारा कई गांव चयनित हैं इस समय। हमारा भी गांव कृषि विभाग द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू से हमारा एक गांव चौसू जो बंगला हमारा गांव है, ये पूर्ण तरह जैविक में चुना गया है। और केवी की तरह से केवी की काफलीगर कृषि विज्ञान अनुसार काफलीगर के माध्यम से भी हमें प्राकृतिक खेती के बारे में, और सरकार की कई योजनाएं आ रही है इस समय की जो प्राकृतिक खेती के बारे में, तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं सर आगे, और आगे भी हम मिशन को तैयार रखेंगे, आगे काम करते रहेंगे सर इसी विषय में।
1: आप जानते भी होंगे कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटी काम आती हुई?
0: हाँ सर, जैसे कि आजकल मोस्टली आप देखेंगे सर खान पीन की जो समस्याएं होती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे बीपी की आज बहुत ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो सर इसमें डैंडेलियन बहुत एक अच्छी जड़ी बूटी है, जिसके फ्लावर से लेके पत्ते से लेके और रूट्स जो है उसके सारे रोग में इस्तेमाल होते हैं। और जैसे कि सर उसके रूट है उनके पाउडर बना के हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे 1 ग्राम हम पर डे यूज करते हैं, तो बीपी में हमको काफी मदद मिलती है सर। 3 महीने में तकरीबन उनका जो ब्लड प्रेशर है अपने आप में नॉर्मल हो जाता है।
1: और एक आपने कि आप बिच्छू घास का भी इस्तेमाल बढ़िया ढंग से कर लेते हैं, तुलसी का काफी ज्यादा क्षेत्रफल में आपने तुलसी बोई हुई है।
0: जी सर,
1: तो बिच्छू घास
0: जैसे नेटल है, जो बिच्छू घास है इसे नेटल टी के नाम से हम नेटल तुलसी टी के नाम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और लोगों को हम ये भी बता रहे हैं कि जो वेस्टेज हमारे यहाँ होता है, जैसे पुदीना हो या पिपरमेंट हो या फिर नेटल ये बिच्छू घास हो, ये अपने आप में रामबाण औषधि है, और ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम आता है। अगर नेटल के बारे में अगर गूगल सर्च करें या विशेषज्ञों से पूछेंगे तो बहुत अच्छी राय देते हैं कि अगर हम अपने खाने में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी में जो हमने जो ऑर्गेनिक जो खाने से जो सेल प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि हम लोग केमिकली खा रहे हैं, तो कुछ न कुछ अंश हमारे बॉडी में अगर जैविक जाते तो कहीं ना कहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये चाय काफी कारगर साबित होती है।
1: पाणी जी, तो हमें लगता है कि आप अपने वहाँ जो आपके होम स्टे में जो भी पर्यटक आते होंगे, आपकी इसमें ठहरते होंगे, आप उनकी काफी अच्छे ढंग से सेवा करते होंगे, उनकी देखरेख अवश्य करते होंगे। तो पाणी जी, अब चलते चलते आप हमारे और जो सुनने वाले श्रोता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: सर मैं जो भी इसकी हमारे सभी श्रोताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आजकल पहाड़ में कई तरह के रोजगार है, स्वरोजगार को हम कर सकते हैं, जैसे लोकल फॉर लोकल के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है, या हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत अच्छी मदद कर रही है होम स्टे हो या हमारे कई स्वरोजगार हों, तो उसमें अगर ध्यान देंगे तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास जाकर, या जिन्हें नॉलेज है जो इससे बेहतरीन काम कर रहे हैं तो उनके पास जाके अगर कुछ देखेंगे तो सीखने को मिलेगा, और एक स्वरोजगार की पहल को एक कदम मिलेगा, और वहीं पर न दूर भटक देश प्रदेश में भटकते हुए अपने गांव को डेवलपमेंट करके छोटे से एरिया में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि अगर हम अपने गांव न छोड़ करके, जिसकी वजह से आज हमारे गांव में पलायन भी हो रहा है, अपने गांव से दूर न जा करके अपने गांव में होम स्टे शुरू करें तो हम बहुत बढ़िया रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत यह है कि हम करें उसको।
0: जी सर, जी सर।
1: तो पाणी जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी बढ़िया जानकारी आपने होम स्टे के बारे में बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दौड़े वाला आप लोग होम स्टे में रोजगार विषय पर चौसू बंगला बैजनाथ गरुड़ निवासी चंद्रशेखर पाणी जी द्वारा करी गई छह संकलित भेंटवार्ता सुनी, और अब कार्यक्रम में आगे सुन लो बिमला बोरा और उन्हें दगड़ियों गई हुई यो लोकगीत।

दगड़ी वाला बिमला बोरा और दगड़ी ही गई यो लोग गीत सुनो और अब कार्यक्रम में जाने जाने सुनो शंकर उप्रीति गई हुई यो लोग गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यार अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
0: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
0: और दूसरा
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
0: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद।

0: हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति के प्रावधानों से छूट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। कहा, सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कल अतिवृष्टि की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को उनकी असाधारण वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया। ये पुरस्कार आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्कृष्ट साहस का परिचय देने वाले जवानों के साथ साथ विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में उल्लेखनीय बहादुरी दिखाने वाले कर्मियों को भी प्रदान किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरामतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अस्पतालों का निर्माण करने के साथ ही उन्हें आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षित मानव संसाधन से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
3: मैं आने वाले समय चंपावत के विकास के लिए आम आदमी के जीवन को सरल बनाने, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहां लगाई गई है और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर बीमारी में भी अच्छी जाँच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएँ हों, खेल सुविधाएं हो, आवास की सुविधा हो, सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास के तरीके से यहां पर आगे बढ़े।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी। उन्होंने लोगों से सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रधान

0: स्वीकृति मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता राज्य के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 30 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इको कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए 3 से 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ के देवकटिया ग्राउंड में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: अगस्त को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी, जबकि 5 से 8 अगस्त तक सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण और साक्षात्कार कराया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 69 पदों पर नामांकन किया जाएगा। इनमें सैनिक सामान्य ड्यूटी के 49 पद उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, कलर, कारपेंटर और हाउसकीपर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिनके लिए देश भर के पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी और ऑनलाइन नामांकन के लिए अभ्यर्थी www.130ta.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 99% से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि मतदाता विवरण के डिजिटाइजेशन का कार्य 92% से अधिक पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में यह कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य अधिकांश जिलों में भी 88 से 97% तक डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं का एक बार फिर सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिलों में डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वहाँ मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की तैयारी शुरू की जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र में आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश ने कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। उन्होंने लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील की। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने रोगियों को आयुर्वेदिक परामर्श और उपचार प्रदान किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज दोपहर झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। वहीं कल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई के लिए देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के शेष जिलों के लिए येल्लो अलर्ट घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति के प्रावधानों से छूट देने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। कहा, सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कल अतिवृष्टि की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन अब अगले दिन देखा जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

कुमार विशु के गाए इसी भक्ति वंदन के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बीटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी प्रियंका। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावतन पौड़ी में सहकारिता सप्ताह

0: को शुभारंभ कैरी वेली सहकारिता का माध्यम से किसानों महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण ते और मजबूती मिलेली। पिथौरागढ़ में 3 अगस्त बिटिन पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिलाओं कर्मियों का वास्ता 6 दिवसीय भर्ती रैली को आयोजन किए जालू और मौसम विभागन भोल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। ये अवसर पर उन बोली कि ये परियोजनाएं चंपावत का विकास में मील को पत्थर साबित होली।
1: सभी योजनाएं आने वाले समय चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहां लगाई गई है और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहां के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर बीमारी में भी अच्छी जाँच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएँ हों, खेल सुविधाएँ हों, आवास की सुविधा हो, सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास की तरफ से यहाँ पर आगे बढ़े।
0: मुख्यमंत्री ने बोले कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति ना बल्कि उत्तराखंड का भविष्य की राजनीति कर दी। उन बोले कि सरकार तुष्टिकरण ना बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर कार्य कर दी, अपना और वाली पीढ़ी को भविष्य सुरक्षित करना कोनी निर्णय लेनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन आज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का 5 वर्ष पूरा होने का अवसर पर राज्य में सहकारिता सप्ताह को शुभारंभ कैरी पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम से संबोधित करती डॉक्टर रावतन बोली कि सहकारिता का माध्यम से किसानों महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास से मजबूती मिलेली। उन लोगों से सहकारिता आंदोलन ते जन जन तक पहुँचाने को आह्वान कैरी डॉक्टर रावतन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ते नए दिशा की ओर गति मिली। उन विश्वास व्यक्त कैरी कि सहकारिता राज्य का विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ते सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते पर्यावरण संरक्षण का सतत विकास में नेतृत्व कुणी सेशल का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किए गए। सेशल्स का राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनीन प्रधानमंत्री मोदी ते यु प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान कैरी। यु पहली बार जब के भारतीय प्रधानमंत्री ते यु सम्मान प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री ने यु सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों ते समर्पित कैरी। सेशल्स की नेशनल असेंबली ते संबोधित कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने बोली कि भारत इन हिंद महासागर की कल्पना कर दू जग समुद्री सुरक्षा का दगड़ा दगड़ी आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी करीनी। बोर्डन बोली कि कक्षा 10वीं का वर्तमान बैच ते नए भाषा नीति को पालन नहीं कन होलू। बोर्डन यू भी बोली कि कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं मां पढ़ने वाला वर्तमान बैच का छात्रों ते भी कक्षा 10वीं मां पहुंचने पर तीसरी भाषा मां बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होली। बोर्डन बोली कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करे जाली। हरिद्वार का भाद्राबाद स्थित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र में आज बिटिन 3 दिवसीय जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर को शुभारंभ हुए। उद्घाटन सत्र का संबोधित कर दी जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेशन बोली कि आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को आधार च उन लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील कैरी। 30 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इको कुमाऊं की तरफा बटी पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों का वास्ता 3/8 अगस्त तक पिथौरागढ़ का देवकटिया ग्राउंड में भर्ती रैली आयोजित किए जाली। एक रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम का अनुसार 3 अगस्त को अभ्यर्थियों का दस्तावेजों को सत्यापन करे जालू, 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होली, जबकि

0: कि 5 से 8 अगस्त तक सफल अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय परीक्षण और साक्षात्कार करे जालू। ई भर्ती का माध्यम से कुल 69 पदों पर नामांकन करे जालू। ये मा सैनिक सामान्य ड्यूटी का 49 पद उत्तराखंड का पूर्व सैनिकों खुणी आरक्षित छन। ये का अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, कलर, कारपेंटर और हाउस कीपर का पदों पर भी भर्ती करे जाली। ये खुणी देश भर का पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकदिन। भर्ती से संबंधित ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन नामांकन खुणी अभ्यर्थी www.130ta.com पर जानकारी प्राप्त कर सकदिन। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह।
1: चमोली जिला में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान संपन्न हुए गए। अभियान का दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की संयुक्त टीमन उच्च हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता, वनस्पतियों, वन्य जीवों और हिमनदों को अध्ययन कैरी की महत्वपूर्ण आंकड़ा जुटेनी। अध्ययन में हिमालयी थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, साइबेरियन वीजल और पाइको प्रत्यक्ष रूप से दिखेनी, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी रेड फॉक्स, सिरो और हिमालयी मार्टिन की मौजूदगी का अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिलनी। अभियान का दौरान हिमालयी मोनाल, स्नो वॉक, स्नो कॉक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेमर गायर सहित कई दुर्लभ पक्षियों की भी उपस्थिति दर्ज किए गए। ये का अलावा लाइकेन, औषधीय पौधों, कीट पतंगों और जलवायु परिवर्तन का प्रभावों को भी अध्ययन किए गए। अल्मोड़ा में आयोजित 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव को समापन भोल होलू। महोत्सव में राज्य का विभिन्न जिलों का स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प का दगड़ा ही अन्य राज्यों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी प्रदर्शनी लगेगी। कुमाऊं महोत्सव आयोजन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी बोली कि महोत्सव को उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण और प्रचार प्रसार करने का दगड़ा ही स्थानीय कलाकारों ते भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का वास्ता मंच उपलब्ध कराना चाहिए।
2: तो पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, उनको एक मंच प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको हमने जिंदा रखना है। तो इसके लिए छोटे बच्चों को भी हम सिखाते भी हैं, मंच भी देते हैं, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्पण के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं उनके क्षेत्र में हो।
1: अब एक नज़र आज का मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का कई हिस्सों में आज दोपहर में खूब जमी के बरखा हुए, जैसे लखू ते भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार औण वाला 2 से 3 दिनों का दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून का राज्य का कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। भोल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी बरखा हो सकती, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बरखा को अनुमान च। विभागन 1 और 2 जुलाई कुणी देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बरखा ते लेके ऑरेंज अलर्ट जारी कैरी, वही राज्य का अन्य सभी जिलों कुणी येलो अलर्ट जारी घोषित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक दो फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन पौड़ी मां सहकारिता सप्ताह को शुभारंभ कैरी। वेली सहकारिता का माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण ते और मजबूती मिलेली। पिथौरागढ़ में 3 अगस्त बिटी पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों का वास्ता 6 दिवसीय भर्ती रैली आयोजित किए जाली। और मौसम विभागन भोल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी से बहुत भारी बरखा की संभावना जते। ये कई दगड़ा गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने सर्व श्रोतागण के आप रेडियो दिगड़ी गोपाल सिंह चमियाल नमस्कार श्रोताओं आशा चो कि आप लोग असल कुशल होने वाला और भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँ कि आप लोग हमेशा असल कुशल रहो और आप कुशल बात हमेशा ठीक ठाक रहो। श्रोताओं आज बात करी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तो एक ऐतिहासिक कानून बनो। एक मुख्य उद्देश्य देशक लगभग 67% ग्रामीण क्षेत्रों में और पूरा देश में 67% और 75% जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 50% लोगों के रियायती कीमतों में पर्याप्त और भली गुणवत्ता खाद्यान्न प्रदान कर यानी राशन प्रदान कर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने लीजिए यह अधिनियम लागू करेगो। यह एक मुख्य उद्देश्य छे खाद्यान्न अधिकार अंत्योदय जो हमारे प्राथमिक परिवार छन जो गरीबी रेखा पर तले जीवन यापन करनी उनके प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न राशन मिलो और परिवार प्रति व्यक्ति के 5 किलो राशन मिलो। निर्धारित मूल्य लाभार्थी जैसे चावल 3 रुपये किलो 2 रुपये किलो प्रति किलो मर गेहूँ और मोटर अनाज 1 रुपये प्रति किलो उपलब्ध करोन यो अधिनियम मुख्य विशेषता छो। और जैसे कि हमारे जो पोषण हमारे जो मातृत्व हमारे बहनी छन उनके जो हमारे अशक्ति बहनी छन दीदी भूला उन्हर 19 के लगभग जो हमारे 19 होनी जो श्याणी छन उनके लिए लगभग एक मदद दी जाना है। बच्चों लीजिए जैसे कि मिड डे मील 6 बेर 4 वर्ष ना जो 19 छन उनका मिड डे मील आंगनबाड़ी केंद्रों में या स्कूलों में दी जा। और महिला सशक्तिकरण में बात करी जाना है ये अधिनियम में राशन कार्ड जैसे कि हमारे परिवार में कोई 18 साल पर मिली महिला छू उनके परिवारक मुखिया रूप में मानी जा। और तय के अलावा अगर हम उनके कोई ले दिक्कत हो चाहे और हमको कोई शिकवा गिलवा छू हमें शिकायत निवारण तंत्र बनी हुई छे ये अधिनियम तहत आप उन्हें शिकायत न कर सकता और आप शिकायत के प्राथमिकता देखी जाल और आपके राशन मुहैया कराई जाल। देखो ये तो छे आपको देख विचार बातचीत कार्यक्रम में आपके हकील छोड़ो पहला सिंह मेहरा और दगड़ियों गाई यो कुमाऊनी लोकगीत।

0: శ్రోతాదిగుడు, కార్యక్రమ అపోక హగిల్ షుణోను క్షేత్ర సంకలిత భేట్ వార్తా బాగ్వానీ సే ఆయ్ అర్జిత్ కర్తే ఉన్నత కాస్తకా శ్రీ తారా సింగ్ లోధియాల్ గ్రామ లోధ వికాస్ ఖండ రామగఢ్ జిల్లా నైనితాల్ ఉన్నా దగ్గర భేట్ కని గోపాల్ సింగ్ చమయాల్.
1: दगड़ियों नमस्कार, भेंट वार्ता क्रम में आज भेंट करनू उन्नत काश्तकार श्री तारा सिंह लोधियाल जुदगढ़ जो ग्राम लोध विकासखंड रामगढ़ जिला नैनताला रोनी वाल सिंह. लोधियाल जी नमस्कार.
2: नमस्कार चिमियाल जी.
1: लोधियाल जी अचानक क्या खेत पाते रहे?
2: चिमियाल जी खेती पाती हमर जो रामगढ़ मुक्तेश्वर जो बैठे छो वो पूरा बागवानी पर आधारित छो और यहाँ जो किसान थे केवल बागवानी पर ही आधारित ज्यादा नहीं. जो हमारे अन्य फसलें हमने गेहूँ मड़वा जो धान आदि वगैरह बिल्कुल बिल्कुल नाम मात्र छो और बाकी जो बागवानी में हमर जो खेती छो विशेष ये वर्ष जो छो ओलावृष्टि है और फल एक जो मात्रा से बहुत कम हुआ. मार्केट बहुत बढ़िया रहो.
1: तो को फल लगा रखी आप जानो आप
2: ये में हमारे जो पुरानी भरायटियाँ शेव छे और पुलम हो गए खुमानी हो गए आड़ू हो गए ये भरायटियाँ से.
1: तो कतो आमदनी है जाए अपन
2: यो अलग अलग किसानों अलग अलग खेती पर बात से जमीन पर बात से कई पास कतु बागवानी था माना अगर कई पास बीस नाली भूमि था कम से कम दो ढाई लाख.

0: पैदावार उनके बेचिए, और अगर मार्केट सी से माल साफ से ग्रेटिंग ऑफ माल अगर बाजार मेरे हल्द्वानी जो उत्तराखंड एक सबसे फिल्म मंडी से हल्द्वानी में अगर वो मार्केट जाना सही माल जाना तो लगभग लगभग अपन साल भर जो खान पीने जुगाड़ जते हमको ना वो जी
1: तो बाजार प्रबंधन के व्यवस्था से लोधिया जी
0: बिल्कुल यो हमारे जो श्रोता से उनारली जिले हमारे जो बागवान भाई से उनारली जिले बहुत महत्वपूर्ण सवाल अफुल कर तो बाजार जो मार्केटिंग और जो प्रबंधक बात करी बिल्कुल नहीं थे और सरकार हमारे लीजिए हमारे अगर कोई चीज अगर ऑन है तो मैं मार का छो तो वही कीमत फिक्स हो चुकी है लेकिन हमारे किसानों जो फसल थे वो डिब्बा था वही पेटी था तो वही कोई फिक्स रेट नहीं थे और वो हमारे जो आरती थे हल्द्वानी मंडी में गए उनार ऊपर निर्भर कर कि हम इसके माल को अगर माना 20 पेटी या 50 पेटी अगर माल चले गया तो इसको हम क्या रेट दे सकनो
1: तो जंगली जानवर का कैसे बच जा सको
0: बहुत ज्यादा जंगली जानवरों तो मके लगे कि हमारे क्षेत्र में विशेष कर सुंगर और बंदर तो सुंगर तो रात में का हो और बंदर दिन में हो तो बंदरों की तो आतंक जैसे कि बंदर जो से बाहर बटी लागे एरिया छोड़े इसलिए कि उन्हें जो शक्ल से बंदरों कुछ सांवला टाइप आप सोचिए रामचंद्री अनवारा जा सोचिए और जो जो एकदम गोरा चिट्टा बंदर से वो शहरों बंदर से यहाँ लागे उनको छोड़ी जा तो बहुत ज़्यादा आतंक से लेकिन फिर क्या करने है तो किसान तो कई सी परिस्थिति में अपन कार्य में छोड़ा पुलम के सेंट्रोजा पुलम से और हमारे विशेष के महत्वपूर्ण जो पुलम से सेंट्रोजा कही जो और एक हमारे दुहर भराठी से उगे हम कंटेंट की जो दुहर भराठी जो पुलम से वो बहुत कच्चा माल हूँ मैं सरसों में उठे कही जा और आज जो हिमाचलक जो भराठिया थे हिमाचलक जो भराठिया थे सघन बागवानी जैसे हम करो अधिकतर लोग सघन बागवानी पर होने ही तो जो दो तीन किस्म जो भराठिया और थे बलेगम्बर और इस टाइप जो पुलम से तो वो आजकल अधिक मात्रा में चल रहा है लोग बाग ज्यादा खेती करना चाह रहे
1: तो कटिंग छटिंग कैसे करते हैं आप
0: बस कटिंग छटिंग अब हमार जो जाड़ों में के हम छटाई कर रहे हैं प्रोनिंग कर रहे हैं और वो आड़ू हो वो सेब हो पुलम हो खुमानी हो जाड़ों में के वे थी और कटिंग हम जब बात कर रहे हैं जब ग्राफ्टिंग है जो बात तो वो हमारे जो जाड़ों में जो हमारे कटिंग है हम घर रख रहे नवंबर दिसंबर के बीच में दिसंबर जनवरी बीच में हम वही ग्राफ्टिंग कर रहे
1: हैं अच्छा तो आप खुद कर लीजिए
0: जी हम खुद करना के लिए क्योंकि हमारे रात दिनों काम था और जो ग्राफ्टिंग के साथ साथ हमारे जो जैसे हम बटिंग करो जैसे चश्मा का दिनों आँख जो लगे तो हमारे जेठा महीन शुरू है जो अषाढ़ तक हम उगे लगे जेठा महीन अगर सबसे पहले हम आँख लगा ली बटिंग कर लो तो इस तक तब अषाढ़ महीने तक घूम के कम से कम एक खटक गुरु खा गए
1: तो बगीच में आपको रोज का तो समय दे सा
0: बिल्कुल बगीच में के चिमियाल जी हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात पूछी अगर बच्चा अगर जब रो तो तब जो मैं दूध दी तो उसे पेड़ जैसा हमारे जो पेड़ हूँ तो हर दिन पेड़ घीज ले जाइए जाओ पेड़ की छुई जाओ पेड़ कौन की वास्तव में मेरे मालिक जो समय नजदीक होना और जो हम ग्राफ्टिंग कर रखना हो प्लास्टिक जो ग्राफ्टिंग टेप हमारे पास हो आजकल जो कशी जो पेड़ के जब आधी पड़े हवा पड़े तो टूटने डर लगे खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उगे आसानी जैसे उगे हल्के करण से पेड़ के छिबे रहन से पेड़ अगल बगल खरपतवार को उगे निकालन से तो बच्चों के बेर ज़्यादा वही खुशामद करना पड़े तब जब अगर माना हम को हम आले बेर 100 पेड़ भरी हलें लेकिन 100 पेड़ भर देर कुछ ना हो तुम पेड़ नीचे भरो और वो एक देख रेख करो बढ़िया तरीके और आने वाले समय में जो है वो बढ़िया तरीके तुम्हें तुम्हारा पालन पोषण करो बहुत बढ़िया तरीके आमदनी दो
1: तो जैसे कोई नई युवा साथी हमारे बगीच बढ़ोन चाहना तो बगीच बढ़ोने लीजिए को क्या क्या करना पड़ोल
0: हाँ जी सबसे पहली हमारे जो सिंगल जो जैसे हम कुशमी आड़ू का दिन चुआड़ू का दिनों या आड़ू का दिनों जो सिंगल पेड़ जो बीज हों वो बीज के बोई जो और वो बीज बुना समय हुई हूँ अपन लगभग लगभग आप लोग ए टाइम में उगे डाल सकता खेत में नर्सरी बेड बना पड़ा और वो उसी समय पर जो सो वो पौध निकल भी रहने और वही बात एक साल जब कलम बराबर हो जाऊँ तो मुझे तुम आपको ग्राफ्टिंग कर सकता ग्राफ्टिंग करना वाले एक साल नर्सरी में रहो नर्सरी में उखाड़ना के बाद तो उगे आपको खेत में प्लांट कर सकता गड्ढों में

0: यो खाद प्रबंधन के व्यवस्था से लो दिया जू?
1: जी खाद प्रबंधन अधिकतर हम तो यही कुल की जो ठंडी इलाके हैं वो तो हमारे जो डाई एनपीके अगर मिक्स कर दे खिस्सर में, लेकिन जो हमारे जो गर्म इलाके हैं गर्म इलाका में केवल गोबर खाद छिटो और उम्र क्या हो कि अगर तुम्हें गोबर खाद छिटला जैविक मैनेजल और वही पेड़ जो मजबूत ताकत से बहुत बढ़िया हो पेड़ मजबूत बनल।
0: तैका अलावा अबुल साग सब्जी ले बेच है क्या?
1: साग सब्जी यो क्षेत्र जो से बहुत कम था क्योंकि की पानी क्या बहुत समस्याएं थी और तो साग सब्जी अपन घर जो खाना इस्तेमाल करना अगर कह के पास थोड़ा बहुत ज्यादा अगर मात्रा में से तो भवाली हमारे नजदीक मंडी से नन्न नन्न नन दुकाने से तो वहाँ बेच देने लोग बाग।
0: तो धिनाई पांडे से तुम्हारे पास है?
1: हाँ धिनाई पानी विषय बहुत ठूल छो आज तो हम पहली जब देखी अल्मोड़ा लोधिया में बहुत सारा लोग कन्न में गए जो सा और एक डंडे में लटका देर दूध बच्चे हम सोचे हैं लोग कहा नहीं क्या करने ही? तो यह हमारे उत्तराखंड में ही बिल्कुल हमारे क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड में दूधक जो व्यवसाय से बहुत बड़ी है और लोग बाग नई नई प्रजाति गाय लोने ही और उन्हें दाना पानी व्यवस्था करनी और दूध जस नहीं और दूसरे बात जैसे कि जो घर में के जो बाल बच्चा से जिनको दूध आवश्यकता आयल था तो उन्हें दूध में घर पे हुए बाजार में थैली भी रोने और दूध जो व्यवसाय बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में चली हुई इसी क्षेत्र में।
0: तो पूरा परिवार तुम्हारा तो बगीचे में लाग रहा हूँ क्या?
1: जी पूरा परिवार हम और बगीचे में लाग रहा लेकिन ये मतलब कुछ समय हमारी व्यवस्था हमारे बगीचे में साथ साथ एक व्यक्ति हम नियुक्त कर लेने की बगीचा की देख रेख को करो।
0: तो कतु पेड़ होने वाले तुम्हारे पास बगीचे में?
1: लगभग 2000 पेड़ मेरे पास वाल आड़ू खुमानी पुलम और सघन बागवानी जो मैं हिमाचल जो बात के 6 लाख का एक प्रोजेक्ट रहा उसमें काम कर रखा मैं और तो वही जो रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया था। तो हम तो योग युवाओं थे आज जयपा जमीन से जयपा पैंस हो और वो बिल्कुल वो खेती के करो और एक कार्यक्रम माध्यम ले रेडियो कार्यक्रम माध्यम आप लोग हमारे जो युवा थे हमारे जो पलायन करनी पलायन ले बचो हमारे जो बजट जमीन से वो भूमि से उगले उला आवाज हो और यही अपन स्वरोजगार करो।
0: लोधिया जी 2000 पेड़ों में आपूला लगा रखी क्या शिव नाशपाती वगैरह?
1: जी शिव नाशपाती पुलम आड़ू खुमानी ये सब भराठी में कोई मिला भी 2000 पेड़।
0: अच्छा गढ़ में हो लो छो?
1: गढ़ में नहीं हमारे क्षेत्र में बिल्कुल ना गढ़ में होगी तो पहली बची हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने बिल्कुल नापसंद करा और भी कोई मार्केटिंग नहीं तो गर्मी वक्त जो पेड़ से बहुत ऊंचे हों उनके खतरे ले हों और भी बाजार कोई भाव लेने हों।
0: जो पहाड़ बड़ी पलायन होना और हमारे युवा साथी पहाड़ बड़ी जानी घर बिल्कुल हमारे जो घर खलियान से बिल्कुल बंजर पड़ गई तो आप हमारे युवा साथी से क्या पहुंचाना क्या संदेश दिन चाहना युवा काश्तकारों?
1: बिल्कुल मैं युवाओं से यह कंसोल कि आप लोग आओ और अपन जो ने बाहर के बहुत कम पैसों में के नौकरी करनी अपन नंदनांग बच्चों का पालन पोषण करने ही और उन लोग जो सो यहाँ आओ और अपन खेती का बात करो अपन बुजुर्गों जमीन का बात करो और यहाँ खेती जो सो विशेष कबेर रामगढ़ मुक्तेश्वर एक क्षेत्र जो जमीन से वो बिल्कुल बिचान है और लोग बागों के उनकी बेचना सिलसिला से उनके नहीं बेच देते हुए अपन पुरखों जो जमीन से पितरों जो जमीन से उनके आवाज करके स्वरोजगार करो।
0: तो अपुल अपुल अमूल्य समय दे लो जाल जो तैली जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी तो बहुत बहुत श्रोताओं के धन्यवाद और अपुल मौक दे ढेर सारी शुभकामनाएं नमस्कार।
2: श्रोताकड़ आल्ले आपू सुनना छा क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता बागवानी से आयोजित करते उन्नत काश्तकार श्री तारा सिंह लोधियाल ग्राम लोध विकासखंड रामगढ़ जिला नैनीताल ये भेंटवार्ता। तो दगड़ियों बात करी जो मिश्रित खेती मिश्रित खेल हमन के कहले कि अगर हम मिश्रित खेत करूँ तो हमारा आय एक स्थायी स्रोत बन सकूँ संसाधन हमारे पास सही है सकनी भूमि उर्वरता है सकें खरपतवार और अन्य कीट नियंत्रण है सकूँ वर्ष भर हमको रोजगार मिलल जैसे कि कई लोग मडू बनी मडू में या अन्य डाला छिड़ा डाल देनी जैसे कि काऊ भटक या सोयाबीनक छिड़ डाल देनी कहीं रेंज डाल देनी और कहीं जैसे कि गेहूँ दगा सरसों बेच देनी तो मिश्रित खेती का अपने एक अलग ऊँचे। और बात करें जो आज हल्द्वान मंडी भाव से टमाटर 1700 बे लीजिए 2200 प्रति क्विंटल खीरा 18

सौ है 2500 प्रति कुंटल छू, फूलगोभी 400 है 2000 प्रति कुंटल, हरी मिर्चें 2500 और 3000 प्रति कुंटल छू, आलू 800 है 1000 रुपये प्रति कुंटल, प्याज 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति कुंटल छू, और तक अलावा अदरक 3000 रुपये 4000 प्रति कुंटल छू। तो मौसम जानकारी मौसम विभाग देहरादून द्वारा पूर्व अनुमान हिसाब है यह सप्ताह रुक रुक बे हल्की बारिश होल और गरजत दगाड़ छीट है सकनी। तो आप जब कहें यात्रा कर ला तो आप बरसाती वगैरह किट वगैरह ले जाया और सावधानी पूर्वक यात्रा करिया। तो कार्यक्रम आपके हगिल सुनो हीरा सिंह राणा गाई यह कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोता देखलियो हीरा सिंह राणाक ये गीता दकड़ आजक ग्राम जगत कार्यक्रम माटू माक इतिक संपन्न हो आयल अपन रेडियो देखड़ी गोपाल सिंह चमियाल के आज्ञा दिला। तब तक लीजिए नमस्कार, फिर भीड़ होली फिर अगले कार्यक्रम में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कीमत में 124 करोड़ रुपए की लागत 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करो कोई सहकारिता के माध्यम किसानों श्रेणियों और गाँव क्षेत्रों का आर्थिक विकास सशक्तिकरण के और मजबूती मिलल। पिथौरगढ़ में 3 अगस्त है पहली सैनिकों और पात्र भूतपूर्व श्रेणियां कर्मियों के लिए 6 दिनों की भर्ती रैली आयोजित करी जाली और मौसम विभाग भोर पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिला में कै कै बहुत भारी द्योग संभावना जताई छू। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। यह मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं चंपावत के विकास में मीलक ढूंग साबित होल।
1: योजनाएं आने वाले समय चंपावत के विकास के लिए आम आदमी के जीवन को सरल बनाने उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है, इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहाँ लगाई गई है और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर बीमारी में भी अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास की तरफ से यहाँ पर आगे बढ़े।
0: मुख्यमंत्री कहा कि उनर सरकार वोट बैंकक राजनीति ना बल्कि उत्तराखंडक भविष्यक राजनीति करे। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टिकरणक ना बल्कि संतुष्टिकरणक नीति में काम करवे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करणक लीजिए निर्णय लेने। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज सहकारिता मंत्रालयक स्थापना 5 साल पूर्व होनक मौके पर राज्य में सहकारिता सप्ताहक शुभारंभ करो पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करण बगत डॉक्टर रावत कहा कि सहकारिता के माध्यम किसानों श्रेणियों और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के मजबूती मिलल। उन्होंने मैसो थे सहकारिता आंदोलन के जन जन तक पहुँचने का आह्वान करो। डॉक्टर रावत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र के नई दिशा और गति मिलना है। उन्होंने विश्वास जता कि सहकारिता राज्यक विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व लीजी सेशेल्स सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित करी गए। सेशेल्स राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनील प्रधानमंत्री मोदी के यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करी। यह पहली बारी छू जब कैले भारतीय प्रधानमंत्री के यह सम्मान प्रदान करी गई। प्रधानमंत्री यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन है संघर्षरत देशों के समर्पित करी। सेशेल्सक नेशनल असेंबली के संबोधित करण बगत प्रधानमंत्री कहो कि भारत यस हिंद महासागर कल्पना करूं जहां समुद्री सुरक्षा दगड़ आर्थिक समृद्धि ल सुरक्षित हो।
2: मेरी सेशेल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति पर निर्देश जारी करी। बोर्ड कहो कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच के नई भाषा नीति का पालन नहीं करण होल। बोर्ड यौले कहो कि कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले वर्तमान बैच के छात्रों के कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसर भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं। बोर्ड कहो कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीका उपलब्ध कराई जाए। हरिद्वारक बहादराबाद स्थित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र में आज बटी 3 दिनों के जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविरक शुभारंभ हो। उद्घाटन सत्र के संबोधित करंदा जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी स्वास्तिक सुरेशल को कि आयुर्वेद केवल रोगों को उपचारक पद्धति नाती बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार छू। उन्होंने मैसो थे आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवन शैली अपनौनक अपील करी।
3: प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड मेले उपलब्ध।

0: ताज़ा समाचार नक लीजिए अपन लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: 30वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इको कुमाऊं तरफा बटी पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व श्रेणिया कर्मियों के लिए तीन बटी 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ देवकटिया मैदान में भर्ती रैली आयोजित करी जाने। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम के अनुसार 3 अगस्त के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापन करी जाए, 4 अगस्त के शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होली, जबकि 5-8 अगस्त जाने सफल अभ्यर्थियों चिकित्सीय परीक्षण और साक्षात्कार करी जाए, युवा भर्ती माध्यम कुल 59 पदों पर नामांकन करी जाए, यह में सैनिक

0: रैली आयोजित करी जाने। एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम के अनुसार 3 अगस्त के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापन करी जाए। 4 अगस्त के शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होली, जबकि 5-8 अगस्त जाने सफल अभ्यर्थियों चिकित्सीय परीक्षण और साक्षात्कार करी जाए। युवभर्ती माध्यमल कुल 59 पदों पर नामांकन करी जाए। यह में सैनिक सामान्य ड्यूटी 49 पद, उत्तराखंडक पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, यह के अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, क्लर्क, कारपेंटर और हाउस कीपर पदों पर ले भर्ती करी जाली। जैक लीजिए देश भरक पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकनन। भर्ती है संबंधित अधिक जानकारी और ऑनलाइन नामांकन के लिए जी अभ्यर्थी www.130ta.com पर जानकारी प्राप्त कर सकनन। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: चमोली जिला में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान संपन्न है गई। अभियान के दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों संयुक्त टीपल उच्च हिमालयी क्षेत्रों की जैव विविधता, वनस्पतियों, वन्य जीवों और हिमनदों का अध्ययन करी महत्वपूर्ण आंकड़ा लय जुटाई। अध्ययन में हिमालयी थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, साइबेरियन वीजल, पाइका प्रत्यक्ष रूप दिखाई दी, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी रेड फॉक्स, सीरो और हिमालयी मार्टिनक मौजूदगी अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिली। अभियान के दौरान हिमालयी मोनाल, स्नोकाक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेमर गायर सहित और दुर्लभ पुथिलों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। यह के अलावा लाइकेन, औषधीय पौध, कीट पतंगों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ले अध्ययन करी गई। अल्मोड़ में आयोजित 10 दिनों कुमाऊं महोत्सव का समापन भूल हॉल। महोत्सव में राज्य अलग अलग जिलों के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खाने वाली चीजों और हस्तशिल्पक दगड़ ही अन्य राज्यों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी ले लगाई गई। कुमाऊं महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी को की महोत्सव उद्देश्य प्रदेशक समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण प्रचार प्रसार करने का दगड़ ही स्थानीय कलाकारों के अपूर्ण प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध करूँ छू।
2: कुमाऊं महोत्सव पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, उनको एक मंच प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको हमने जिंदा रखना है। तो इसके लिए छोटे बच्चों को भी हम सिखाते भी हैं, मंच भी देते हैं, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्पण के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं उनके क्षेत्र में हो।
0: और अब एक नज़र आजक मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज दोपहर झमाझम द्योलागो जेल मैसों के बहुत ज्यादा गर्मेल राहत मिले। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना छू। भोल, पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी द्यो लाग सके, जबकि अन्य जिलों में हल्की है मध्यम द्यो का अनुमान छू। विभाग 1 और 2 जुलाई के लिए देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी द्यो को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी करी छू। वे राज्य के अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित करी गई छू। अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए लागत 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करो। कोई सहकारिता के माध्यम किसानों, श्रेणियों और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण के और ही मजबूती मिलल। पिथौरगढ़ में 3 अगस्त है पहली सैनिकों और पात्र भूतपूर्व श्रेणिया कर्मियों के लिए 6 दिवसीय भक्ति रैली आयोजित करी जल। और मौसम विभाग भोल, पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिले में कह बहुत ज्यादा द्योग संभावना जताई छू। यगदगढ़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं अभिजीत की आवाज में चलते चलते फिल्म से। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में चलते चलते फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम की अगली पेशकश कारोबार फिल्म से। गीत एक बार फिर से जावेद।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं क्रांति फिल्म का नगमा। नगमा निगार है आनंद बख्शी और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की पहली पेशकश मुन्नी बेगम की आवाज़ में।

मुन्नी बेगम की आवाज़ में मोहसिन भोपाली की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं फायज अनवर का लिखा गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

पंकज उधास के गाए इसी गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में ब्राजील का सामना जापान से, वहीं देर रात जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन

0: प्रतियोगिता के उप विजेता रहे। FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कांस्य पदक विजेता पुरुष वॉलीबॉल भारतीय टीम को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। वहीं कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: पहले नॉकआउट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका शुरुआत से ही कनाडा पर हावी नजर आई और लगातार आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कुछ अच्छे मूव जरूर देखने को मिले, लेकिन टीम इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी।
2: मिक्सचर ऑफ मैन टू मैन एंड ज़ोनल मार्किंग हियर फ्रॉम द साउथ अफ्रीकंस। द हेड इज डाउन एंड ऑलमोस्ट इन। गुड फॉलो अप सेव फ्रॉम विलियम्स। वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेबी गोलकीपर एंड डिफेंडर ऑन द लाइन।
1: दूसरी ओर कनाडा को पहले हाफ के अंतिम मिनटों में गोल करने के 2 बढ़िया मौके मिले, लेकिन टीम इन मौकों को भुनाने में असफल रही। मोइस बॉम्बिटो के शानदार हेडर को दक्षिण अफ्रीका के डिफेंडर ऑब्रे मोडिबा ने गोल लाइन के पास से क्लियर किया, जबकि ताजोन बुकानन के बेहतरीन शॉट का गोलकीपर रोनविन विलियम्स सफलतापूर्वक बचाव करने में सफल रहे। पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो पाया। दूसरे हाफ में दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले कनाडा की टीम ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेलती हुई नजर आई। टीम ने दक्षिण अफ्रीका के गोल पर एक के बाद एक हमले किए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के मजबूत डिफेंस ने कनाडा की एक नहीं चलने दी। मैच के 75वें मिनट में कनाडा की ओर से स्टार खिलाड़ी अल्फोंजो डेविस मैदान पर आए। डेविस ने मैदान पर आते ही अपनी रफ्तार और बेहतरीन ड्रिब्लिंग के दम पर विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बना दिया। रोमांचक मुकाबलों के अंतिम मिनटों में कनाडा के कप्तान स्टीफन यूस्टाक्वियो ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाते हुए निर्णायक विजयी गोल किया। इस जीत के साथ ही कनाडा ने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
2: This is dropping nicely. Estequio! Steven Estequio! And it is elimination for Bafana Bafana. But Canada in uncharted waters are sailing into the last 16.
1: कनाडा की जीत के साथ ही इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर अब समाप्त हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन की कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली यांग से 15-21, 21-16, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं फाइनल मुकाबले का हाल।
3: विश्व रैंकिंग में 38वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सत्र का अपना पहला फाइनल खेल रहे श्रीकांत की गलतियों का फायदा उठाकर यांग ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। श्रीकांत ने वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 पॉइंट जीते और स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया। हालांकि ब्रेक के बाद चीनी ताइपे के शटलर ने वापसी करते हुए 17-12 से बढ़त बना ली। यांग ने इसके बाद 6 गेम पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट बचाया, लेकिन फिर शटल को बाहर मार दिया, जिससे यांग ने 17 मिनट में पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में श्रीकांत ने लगातार 3 पॉइंट जीतकर 7-4 की बढ़त बना ली, लेकिन चीनी ताइपे शटलर ने जल्द ही 8-8 से बराबरी कर ली। श्रीकांत ने एक शानदार बैकहैंड क्रॉस कोर्ट नेट शॉट से 10-8 की बढ़त बनाई। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए उसे 18-13 कर दिया और फिर 7 गेम पॉइंट हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में यांग ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 4-1 की बढ़त हासिल कर ली। श्रीकांत ने इस बीच गलतियां की, जबकि चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखते हुए बढ़त को 15-7 तक पहुंचा दिया। श्रीकांत के एक और वाइड रिटर्न के बाद यांग ने 12 मैच पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट बचाया, लेकिन वो अपना संघर्ष जारी नहीं रख पाए और श्रीकांत के प्रतिद्वंदी ने अपने करियर का पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया। किया। मैच के बाद श्रीकांत ने इस मुकाबले का अनुभव साझा किया।

0: Yeah.
1: I should have maybe played a little better in the opening set. I just feel like whatever I've been doing is working. I just have to keep working hard. Probably I feel like I'm there. It's just about being able to win those crucial points.
0: श्रीकांत ने पिछले वर्ष मलेशिया मास्टर सुपर 500 और सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में भी दूसरा स्थान हासिल किया था। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: उधर बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का अभियान आज क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-2 से मिली हार के साथ समाप्त हो गया। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी प्रो लीग के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित 60 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया। संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: मैच की शुरुआत इंग्लैंड ने

0: अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित 60 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया। संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत इंग्लैंड ने आक्रामक अंदाज में की। पहले ही क्वार्टर में मेजबान टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित शशि कुमार ने शानदार बचाव करते हुए टीम को शुरुआती झटके से बचा लिया। भारत की ओर से पहले क्वार्टर में सबसे अच्छा मौका अभिषेक को मिला, लेकिन वो भी इसे गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे। दूसरे क्वार्टर में जर्मनप्रीत सिंह ने शानदार शॉट लगाते हुए गोल करने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने बचाव करते हुए भारत को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अधिक आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में असफल रही। तीसरे क्वार्टर में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। चौथे और अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा दम लगा दिया, लेकिन कोई भी टीम गोल न कर सकी। इसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया, जहां भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल किए, जबकि भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया। संजय ने डिफेंस में अपने खेल से टीम को जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मोहित शशि कुमार और सूरज करकेरा दोनों गोलकीपरों ने अहम मौकों पर बेहतरीन बचाव और टीम को जीत दिलाई। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात वॉलीबॉल पर। पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने कल ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ भारत FIVB विश्व रैंकिंग में 42वें पायदान पर पहुंच गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय खेल जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक है। सरकार ने प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और एथलीट सपोर्ट सिस्टम के लिए जो इंतजाम किए हैं और उनकी योजना बनाई जा रही है, वो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। कप्तान जेरोम विनित चार्ल्स की अगुवाई और सर्बिया के ड्रैगन मिहाइलोविच की कोचिंग वाली भारतीय टीम ने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत पुल स्टेज में अजय रहा और कांस्य पदक प्लेऑफ में बहरीन को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पोडियम में जगह बनाई। और अब बात एथलेटिक्स पर। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रोहित यादव ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही रोहित ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
2: रोहित इस सीजन में भारत की ओर से सबसे लंबी दूर का थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वो श्रीलंका के रमेश अथरंगा पथिरगे के 92.62 मीटर के बाद दुनिया के टॉप थ्रोअर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में रोहित ने न सिर्फ अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि मीट रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो पहले 84.35 मीटर था। रोहित यादव ने 5 थ्रो किए, लेकिन पांचवा और अंतिम प्रयास सबसे शानदार रहा। उन्होंने 87.05 मीटर का थ्रो कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं लॉन्ग जंप स्पर्धा में केरल के मुरली श्री शंकर एम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 8.38 मीटर की दूरी तय की। खास बात ये रही कि उनकी सभी वैध छलांगे 8 मीटर से अधिक रही। श्री शंकर ने कहा कि यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी था, जिससे उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिली।
3: I feel that is a magnificent feat. Indian athletics ke history mein we can kind of write it down that this 2026 year 4 long jumpers have jumped above 820 in this one season. So that shows the depth of long jump in India and really happy to contribute to that part. I also have a wild stat. I was just counting. This was my 60th jump above 8 meters in this competition, like all together. We hope to continue that moment.
2: इसी प्रतियोगिता के अलग अलग स्पर्धाओं में एथलीटों में शानदार प्रदर्शन कर एशियन गेम्स का टिकट पक्का कर लिया। पुरुष वर्ग में विशाल टीके, मनु टीएस, अभिषेक पाल, बालकिशन, सचिन यादव और श्री शंकर एम शामिल रहे। वहीं महिला वर्ग में प्राची, सीमा, अंकिता और पूजा ने भी क्वालिफाई किया। रुबीना अजीज, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एशियाई युवा टेबल टेनिस पर। बैंकॉक में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की अंडर 19 लड़कों की टीम ने हांगकांग को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ टीम

0: में कांस्य पदक और अगले वर्ष की विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल में भारतीय लड़कों का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन से होगा। हालांकि भारतीय अंडर 19 लड़कियों की टीम क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-3 से हारकर पदक राउंड तक नहीं पहुंच पाई। बात क्रिकेट पर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। हालांकि पुरुष टीम को सीधे क्वालिफाई करने के लिए इस वर्ष के अंत तक आईसीसी T20 रैंकिंग में एशिया के सर्वोच्च स्थान हासिल करना होगा। और अब बात T20 विश्व कप पर, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। एलिस परी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस बीच कल बेलफास्ट में ही आयरलैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 153 रन ही बना सकी। जय मुंद्रा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हालांकि भारत का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आज ही के दिन भारत ने 2 वर्ष पहले 2024 में T20 विश्व कप रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता था। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
1: एक आखिरी मौका, हार्दिक पांड्या, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13 and they become the unbeaten team to hold the trophy. 50th win for Rohit Sharma as captain in T20s and the first captain to do so.
2: Congratulations to India, led by Rohit Sharma. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024.
3: Since the time we have come to India, it's been wonderful. The reception we have got here tells you the kind of enthusiasm, the kind of waiting that people had. So this trophy, yes, of course, it means so much to us, but it is for the entire nation. You know,
0: वहीं इस बीच विंबलडन टूर्नामेंट में यानिक सिनर का मुकाबला मियोमीर कैकमनोविच से जारी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे कल फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
5: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक

0: 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफ़ी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक

0: शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरों मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काला बाजार फिल्म से। नगमा निगार थी शैलेंद्र। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं शारदा और मुकेश की आवाज़ों में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से। गीत है हसरत जयपुरी का और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

इंद्रधनुष। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें MSME का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।

0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले
1: जी
0: इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं,
1: जी
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफ़ॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज़ हमने दी,
1: दी हैं
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज़ हमें
1: जी
0: देनी थी। और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज़ का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज़ और दी हैं।
1: दी
0: तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेज हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त हो
1: उपलब्ध हो
0: सके।
1: जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा
0: जी
1: कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूँगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो
1: जी
0: 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है, तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।
1: जी
0: तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे
1: जी
0: बढ़ा

0: तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है, तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा। तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला, ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं, तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा प्राप्त
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज़ की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या

0: MSMEs की जो जेम्पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान
1: जी।
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियाँ हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
4: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं अगर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मेरा

0: अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं या नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है, जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज इनमें कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं इनमें उनको और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो लघु ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो 1800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
4: हेलो
1: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
4: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
4: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
4: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
4: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर

0: एक्सपोर्ट्स हम कर पाएँ बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहाँ पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
1: जी, तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए अब पेश है सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश गुलाम अली की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में।

श्रोताओं, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को अभी आप सुन रहे थे। आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाजों में मदन पाल का लिखा ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज़ों में मदन पाल का लिखा ये गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आओ प्यार करें फिल्म से, नगमा निगार थे राजेंद्र कृष्णन। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं वक्त फिल्म से। शब्द रचना है सारे लुधियानवी की और धुन बनाई है रवि ने। इस गीत को आवाज़ें दी हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म है वापस, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

श्रोताओं, आइए एक बार फिर से सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीत है कैफी आज़मी का, संगीत दिया है मदन मोहन ने, फिल्म है हंसते जख्म।

दिल की राहें फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
0: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition, and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report,

0: the MET also for the predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the women's T20 competition. And that's the end of the news.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रथम सभा में आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।